सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें

0: 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर की तरफ से प्राणी को जो अनमोल भेंट मिली है वो है हमारी सांसें। अगर हमारी श्रद्धा उस ईश्वर के प्रति है तो हर सांस में उसी का सुमिरन करना चाहिए।

वंदना कार्यक्रम की इन भक्ति रचनाओं में आज आपने सुना अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण और साथियों की गाई ये भक्ति रचनाएं। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु, जिसमें आज का विचार है मन की पवित्रता। आलेख है कैलाश चंद्र भाटिया का और वाचन है पुष्पा शर्मा का।
1: मनुष्य के सुख का उसके दुख का कारण मन है। मन से ही वह सुखी होता है और मन से ही वह दुखी। मन है क्या, इसको परिभाषित करने की बहुत कोशिश की गई है। यह माना गया है कि मन मस्तिष्क नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क शरीर के भीतर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें बहुत कुछ घटता रहता है। मस्तिष्क की तरंगों को कोई चेतना और कोई चिति कहता है। कल्पना करना, अतीत में जाना, ध्यान केंद्रित करना, विचार करना आदि क्रियाओं का संपादन मस्तिष्क करता है, पर इनके समुच्चय का नाम ही मन है। यह मन ही तो है जिसमें चाह है, लक्ष्य है, साथ ही उसमें पवित्रता और कोमलता भी है। देखा गया है कि सब मन से ही दुखी हैं। कोई अपने व्यवसाय के घाटे से, कोई दूसरे से पीड़ित होने से, कोई अपने ही मन में सदा सोच सोच कर जलने से, कोई दुर्जन के तीक्ष्ण वाणों से जर्जर होने से, कोई पराजय के बाद शत्रु के जय घोष से, और कुछ नहीं तो मृत्यु के भय से। जिसने मन को जान लिया, मन को समझ लिया, तो वह अपने मन को मोड़ सकता है, मन को शुद्ध बना सकता है और सुखी रह सकता है, क्योंकि मनुष्य मनोमय है। मन जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। मन में जो विचार उठता है, जैसा विचार उठता है, उसी के अनुसार

0: इंद्रियां वैसे ही कार्य में संलग्न हो जाती हैं। मन को जितना हम स्थिर करेंगे, स्थिर रखेंगे, उतने ही बलवान होते चले जाएंगे। पानी का छोटा सा स्रोत बहता रहता है, उसको बांधकर, रोककर प्रवाह को रोक लिया जाए तो बड़ी जलाशय का रूप धारण कर लेता है। फिर जो चाहो उस जल का उपयोग करो। इसी प्रकार मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो उसमें महान शक्ति आ जाती है। यह ठीक है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। ध्यान और चिंतन से मन को एकाग्र किया जा सकता है, वही मन को शांत करने का अमोघ उपाय है। इसके विपरीत मन में उठने वाला विकल्प स्वयं को ही फंसाता रहता है। यह ध्यान रहे कि मन को ठीक मोड़ा जाए, नियंत्रित किया जाए और जो कुछ बनना चाहते हो उसका संकल्प लिया जाए। मन ही तो संकल्पमय होकर सक्रिय हो उठता है। संकल्प ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। संकल्प ही चेतना का वह गुण है जिसमें मन की दृढ़ता, इच्छा, विचार विमर्श, चिंतन सब कुछ विद्यमान रहता है। संकल्प ही मनुष्य का वह गुण है जिससे मन संचालित होता है। वह व्यक्ति के जीवन में नया प्राण फूंकती है, उसके जीवन को गति देती है। महाकवि प्रसाद की पंक्तियां स्मरण होती हैं, मन जब निश्चित सा कर लेता, कोई मत है अपना, बुद्धि देव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना। इंद्रियों से मन बहुत श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से भी बुद्धि का स्वामी जो अंतरात्मा है वह परम श्रेष्ठ है। इसी से प्रेरित होकर विवेकानंद ने विश्व को अमर संदेश दिया था कि हमारे देश को लोहे के पुट्ठे और फौलाद की नाड़ियों और ऐसी प्रबल मनः शक्ति की आवश्यकता है जिसको रोका ना जा सके।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मन की पवित्रता, इस विषय पर आलेख। आलेख था कैलाश चंद्र भाटिया का, वाचन था पुष्पा शर्मा का। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है उत्तरा केलकर का और ए हरिहरन का, संगीत है सतीश भाटिया का।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। स्वर थे उत्तरा केलकर और ए हरिहरन के, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा अमरूद की फसल में सामायिक कार्य। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7:00।

सुबह 7:31 पर कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी। सुनिएगा ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे, विषय होगा श्री बिहारी जी मंदिर वृंदावन। आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का, प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 9:00 हिंदी वार्ता के अंतर्गत विषय बाल साहित्य में पद्य कथा के सशक्त हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर। आलेख होगा डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का, वाचन होगा राजेश शर्मा का। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय पुनर्चक्रण, आलेख और वाचन वंदना शर्मा का। सुबह 9:30 पर काव्यात्मक संवाद में श्रम की महत्ता, इस विषय पर वार्ता होगी। वार्ताकार होंगे मनमोहन गुप्ता अभिला।

प्रत्याशी, इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय पूर्वाह्न 11 बजे, प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की। गीत, बात और एसएमएस, व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मध्यान्ह 12 बजे। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे शैलेंद्र कुमार शर्मा। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक 1:15 पर। चर्चा के विषय होंगे विश्व स्टील पैन दिवस और समाज पर नशे का दुष्प्रभाव। साथ ही सुनिएगा आशियाना वार्ता, विषय मल्टीपर्पज होम डेकोर, वार्ताकार होंगी निधि भाटिया। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। आज की बात में विषय होंगे विश्व स्टील पैन दिवस और खुदी राम बोस बलिदान दिवस। साथ ही युवा वार्ता सुनिएगा डिजिटल साक्षरता, वार्ताकार होंगी कोकिला सारस्वत। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम शाम 6:15 पर। सुनिएगा भक्त कथा भक्त सुदामा की, कथाकार होंगे देवी चरण शर्मा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन शाम 6:30 पर। 6:50 पर फोन इन कार्यक्रम आज होगा हेलो किसानवाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

शाम सुहानी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। संसद समीक्षा रात 8 बजे। 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा। सुहाने तराने रात 9:15 पर। और रात 10 बजे सुनेगा संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई का अनुप्रसारण।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें, जिसका विषय है अमरूद की फसल में सामयिक कार्य। वार्ताकार है डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, अमरूद जल्दी फल देने वाले फल वृक्षों की श्रेणी में आता है। इनके कलमी पौधे लगाने के तीसरे वर्ष से ही फल मिलने शुरू हो जाते हैं। फल वृक्षों के विकास के साथ फलन भी काफ़ी बढ़ती रहती है और कुछ दिनों तक काफ़ी संख्या में फल आते हैं। अमरूद के फल वृक्ष में साल में कई बार फूल आते हैं और विभिन्न ऋतुओं में उनसे फल की प्राप्ति होती है। कुछ ऋतुओं का फल गुण विशेष में अच्छा होता है, जिसके कारण उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। अमरूद के शरदकालीन फल खाने में मीठे, स्वाद में अच्छे तथा विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जबकि वर्षाकालीन फल में मिठास कम होता है और स्वाद भी फीका होता है। इस ऋतु के फल से उत्पादकों को कम कीमत मिलने के कारण आय भी कम होती है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि वर्षाकालीन फलन एक बार आरंभ हो जाने पर प्रत्येक वर्ष इसी ऋतु में फल मिलता रहता है। परिणाम स्वरूप शरदकालीन फलन क्रमशः घटते घटते बंद ही हो जाती है। ऐसा होना फलोत्पादकों के लिए खराब माना जाता है। अब सवाल उठता है कि अमरूद के शरदकालीन फल अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त किए जाएं, ताकि उत्पादकों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। वर्षाकालीन अमरूद के लिए मार्च अप्रैल में ही फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिनसे जुलाई अगस्त में फल प्राप्त होते हैं, जबकि शरदकालीन फल मुख्यतः जून से सितंबर के फूलों से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि पौधों में मार्च अप्रैल में पुष्पण न होने दें या कम से कम पुष्पण हो, तभी तो जुलाई से सितंबर में पुष्पण अधिक होकर के शरदकालीन फल प्राप्त हो सकता है।

जनवरी से मार्च की अवधि में थालों की हल्की खुदाई कर कुछ जड़ों को काट करके हटा दिया जाता है और इस अवधि में सिंचाई भी कम करते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे इस स्थिति में नहीं रह पाते हैं कि मार्च अप्रैल में उनमें पुष्पण हो सके। दूसरा तरीका ये है कि पौधों पर मार्च अप्रैल के महीने में ही फूलों को तोड़ दिया जाता है या किसी अन्य विधि से हटा देते हैं, जिससे कि

0: इसे हटा देते हैं जिससे कि पौधों में पुष्पण शक्ति संचित रह सके, ताकि शरद कालीन के लिए जून के बाद पुष्पण अधिक मात्रा में हो। छोटे पौधों में या जहां कम पौधे हों वहां यह प्रक्रिया हाथ से तोड़कर की जा सकती है। बड़े बागों के लिए फूलों को झाड़ने के लिए नेफ्थलीन एसिटामाइड नामक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन की 1 ग्राम मात्रा को 2 चम्मच स्प्रिट या एल्कोहल में घोल करके 20 लीटर पानी में घोल बनाएं, फिर इसे पौधे के ऊपर छिड़कें। पहला छिड़काव फूल लगने के 10 दिनों के अंदर तथा दूसरा छिड़काव उसके 2 हफ्ते बाद किया जाता है। ऐसा करने से फूल और छोटे फल झड़ जाते हैं। मई जून के महीने में पौधों को आवश्यकता के अनुसार खाद देने से शरदकालीन फलन में वृद्धि होती है। पौधों की उम्र के अनुसार 10 से 25 किलोग्राम कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद डालनी चाहिए। जून से सितंबर के बीच आवश्यकता के अनुसार कई सिंचाई करने से भी शरद ऋतु के फलन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था अमरूद की फसल में सामायिक कार्य। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

बहार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में, बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत हेमंत कुमार के स्वर में।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म पतिता में। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आर पार फिल्म से। आवाज है गीता दत्त की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: को।
1: आशियाना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया।
3: राज्यसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद कल लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को UPI पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: संसद ने कल ही बैंक कार बही साक्ष्य

0: विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। इस विधेयक को कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने कल अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। विधेयक और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से रविवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में प्रदेश के खिलाड़ी गुलवीर सिंह और अस्मिता डे भी शामिल हैं। इस अवसर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
4: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
4: वाराणसी में खेल तो प्रैक्टिस कर रही थी ना?
5: जी सर, बहुत
4: कैसा बना है स्टेडियम?
5: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है। सर साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर, और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
4: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं।
0: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें प्रदेश से जुड़ी अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत एवं कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कल गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है।
6: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने

0: के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
1: मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
0: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में ये तिरंगा लहराया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
2: मुख्यमंत्री गोरखपुर सुनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से निकलकर यह सड़क ग्रीन सिटी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में एसटीपी के समीप स्थित मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

भैया, यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। विषय है श्री बिहारी जी मंदिर वृंदावन। आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी को, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की।

ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे रूपक माला के अंतर्गत सुल रूपक बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का है, संयोजक हैं श्री कृष्ण शरद और प्रस्तुतकर्ता श्री राम किशोर त्रिपाठी।

0: अब से 500 वर्ष पूर्व का वृंदावन,
1: यमुना का कल कल प्रवाह,
0: सघन वन, वृक्षों के समूह, उनसे लिपटी हुई लताएं,
1: भांति भांति के फूल, पवन में लहराती उनकी सुगंध, हरिणों की कुलांचें,

0: आहा हा हा हा हा
1: धन्य है गुरुदेव, आपने वृंदावन के रसिकों की प्रार्थना पर आज हमें भी अपने आराध्य श्री श्यामा कुंज बिहारी के दर्शन कराए।
2: महान आश्चर्य है कि निधि वन के इस विवर से पहले प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश में से ये दोनों स्वरूप प्रकट हुए।
0: ये मेरे प्राण धन है नित्य बिहारी श्यामा जी और कुंज बिहारी जी, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं।
3: कहिए श्री हरदास जी, आप तो स्वयं ललिता अवतार हैं, हमारे नित्य विहार के सहचर, क्या इच्छा है आपकी?
0: हे प्रिया प्रियतम, आज घोर कलिकाल है, लोगों का जीवन रस सूख गया है, वे न तो वृंदावन के दिव्य स्वरूप को समझते हैं और न आपके निर्मल और परात्पर प्रेम की फुहारें ही उन्हें मिली हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जैसे मुझे प्रतिक्षण दर्शन देते हैं, वैसे ही इस जीव जगत के नैनों को भी पारमार्थिक सुख देने के लिए आप दोनों श्यामा जी और श्री कुंज बिहारी जी एक विग्रह के रूप में इस निधवन के निकुंज मंदिर में विराजमान होकर दर्शन दें।
4: हे स्वामी जी, आपकी इच्छा संसार की कल्याणकारी है, हम दोनों एक स्वरूप होकर सदा आपके साथ रहेंगे। प्रत्यक्ष रूप में किस नाम से पुकारेंगे आप हमें?
0: हे प्राण वल्लभ, मेरे लिए तो आप दोनों का एक ही नाम है, कुंज बिहारी, क्योंकि आपको कुंजों का विहार ही सर्वप्रिय है। आपकी इस बाकी छवि को देखकर मुझे लगता है कि मैं आपको बांके बिहारी कहूं या केवल बिहारी ही कहूं। आपके नाम रूप तो अनंत है, पर हे बांके बिहारी, आपका ये नाम लोग को अवश्य प्रिय होगा।
5: श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य की चर्चा वृंदावन ही क्या संपूर्ण भारत में फैल गई।
6: श्री बांके बिहारी जी परम वीतराग वैराग के निधि, परंतु परम अनुरागी रसिक स्वामी हरिदास जी के संगीत के वशीभूत होकर प्रकटे हैं। वे कितने मधुर हैं, कितने सरस हैं।
5: हाँ, संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी भी तो अपने ठाकुर श्री कुंज बिहारी जी को संगीत संगी ही बता रहे हैं।

जब ब्रह्मानंदी संप्रदाय के परम रसिक संत श्री अग्रदास जी ने श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य की चर्चा सुनी तो वे निधिवन पधारे। उन्होंने श्री स्वामी हरिदास जी और श्री बांके बिहारी जी की प्रशंसा में एक पद निवेदन किया।

रसिकवर व्यास जी तो श्री स्वामी हरिदास को गुरुभाव से देखते थे। उन्होंने तो यही लिखा कि स्वामी हरिदास जी ने श्री कुंज विहारी की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी की आशा ही नहीं की। उन जैसा रसिक तो भूमंडल और आकाश में न तो अब तक हुआ है और न होगा।

जब भक्तिमती मीरा ने सुना कि स्वामी हरिदास जी के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्रकाश निधिवन में हुआ है, तो उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के समक्ष आकर उन्हें अपना प्रणाम निवेदन किया।

भी अवतारी हैं, सर्वोपरि हैं। भक्त मालकार नाभाजी ने लिखा है कि स्वामी हरिदास जी केवल अपने आराध्य का ही नाम जपते हैं, रास रस गाते हैं, वे गान कला गंधर्व हैं। न जाने कितने राजा उनके दर्शनों के लिए निधवन के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा में खड़े रहा करते हैं।

श्री विहारिन देव जी ने लिखा है कि श्री बांके बिहारी जी अपने बांके नाम से अति विख्यात हैं। ये उनका इच्छा बपु है और वे सब अवतारों के

0: स्वामी हरिदास जी श्री बिहारी जी महाराज को उत्तम से उत्तम भोग लगाते थे, परंतु उस उत्तम प्रसाद को वे मोर, बंदरों तथा मछलियों को खिलाकर जीव मात्र का पोषण करने का आदर्श सामने रखते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोषे,
1: और स्वयं भी केवल दो तोले चना मात्र खाकर वैराग्य से जीवन यापन करते थे।
0: स्वामी हरिदास जी के उत्कट वैराग्य को सिद्ध करने वाली पारसमणि की कथा उनसे संबंधित अनेक ग्रंथों एवं भक्तमालों में लिखी है।
1: दयाराम नाम का एक ब्राह्मण पंजाब से स्वामी हरिदास जी की सेवा में उपस्थित हुआ।
0: उसके पास एक पारसमणि थी जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है।
1: दयाराम ने मन में विचार किया कि स्वामी हरिदास विरक्त संत हैं और इनके यहाँ श्री बिहारी जी महाराज का दिव्य भोग लगाया जाता है, संतजन प्रसाद पाते हैं, ये जीव मात्र का पोषण करते हैं, तो क्यों न पारसमणि इनको अर्पित कर दी जाए।
0: जैसे ही उसने वो पारसमणि स्वामी हरिदास जी को अर्पित की, स्वामी जी ने उससे कहा,
1: जाओ सबसे पहले इस पारसमणि को यमुना में फेंक कर आओ।
0: दयाराम ने स्वामी जी की ओर आश्चर्य और दया भाव से देखा। उसने सोचा, ये संत हैं, इन्हें क्या मालूम कि पारस कितना बड़ा धन है।
1: स्वामी हरिदास जी हंसे और कहा, दयाराम मुझे तुम पर दया आ रही है, श्री बिहारी जी की शरण में आना चाहते हो, परंतु जगत के धन इस पारस का मोह छोड़ ही नहीं पा रहे हो।
0: दयाराम मन ही मन दुखी था, परंतु रसिक शरण स्वामी हरिदास जी की आज्ञा को भी कैसे टालता।
1: उसने भारी मन से वो पारसमणि यमुना में फेंक दी।
0: दुखी मन से उसने अपने आंसू धोने के लिए यमुना जल में हाथ डाला।
1: जल में उसके हाथ कुछ टुकड़ों से टकराए।
0: दयाराम ने उन्हें बाहर निकाला।
1: अरे ये तो अनंत पारसमणियां हैं।
0: तब दयाराम की समझ में आया, इस संसार की बड़ी से बड़ी संपत्ति का इस रस राज में कोई मूल्य नहीं है, अवश्य ये श्री बिहारी जी की कृपा है और स्वामी हरिदास जी का वैराग्य है। वृंदावन में उन दिनों अनेक रसिक साधना कर रहे थे, परंतु उन सब में स्वामी हरिदास जी ही अकेले संगीत शिरोमणि थे।
1: ध्रुव पद का आविष्कार ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने अपने दरबार में किया था, जिसका उद्देश्य राजाओं की प्रशंसा और नायक नायिकाओं के लौकिक रस का वर्णन था।
0: परंतु स्वामी हरिदास जी का संगीत केवल श्यामा कुंज बिहारी अर्थात श्री बांके बिहारी जी को रिझाने के लिए था।
1: तानसेन भी स्वामी हरिदास जी का संगीत शिष्य था, परंतु उसने दरबारी गायक होना ज्यादा पसंद किया।
0: सम्राट अकबर ने उसे अपने नवरत्नों में स्थान दिया और कहा कि तानसेन जैसा गायक विगत 1000 वर्षों से न हुआ है और न होगा।
1: एक दिन तानसेन का संगीत सुनने के बाद सम्राट ने कहा,
2: आज की दुनिया में तुम ही संगीत के बादशाह हो तानसेन।
3: मैं किस गिनती में आता हूं सम्राट। मेरे गुरु स्वामी हरिदास जी का संगीत आपने नहीं सुना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं।
2: तुम्हारे संगीत गुरु वो वृंदावन वाले फकीर?
3: हाँ सम्राट, फकीर तो है वे, पर सम्राटों के भी सम्राट हैं।
2: तो उन्हें

0: अपने दरबार में बुलाया जाए?
1: वे श्री बांके बिहारी के दरबार निधिवन को छोड़कर कहीं नहीं जाते सम्राट।
0: तो उनका संगीत सुनने के लिए हमें ही वहां चलना होगा?
1: परंतु सम्राट, सम्राट बनकर नहीं, सामान्य व्यक्ति बनकर। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दरवाजे पर उनके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं।
2: द्वार ठाड़ी रही दर्शन आशा जास की, आशु धीर उद्योत कर रस की छाप हरिदास की।
0: आहा, कितना दिव्य वातावरण है निधिवन का, बाहर से ही मन प्रफुल्लित हो गया।

0: प्रफुल्लित हो गया। कैसा लग रहा हूं तानसेन, मैं तुम्हारे नौकर के रूप में।
1: बादशाह शर्मिंदा ना करें।
2: तानसेन
1: गुरुदेव, मैं श्री बिहारी जी की सेवा में एक पद प्रस्तुत करना चाहता हूं।
2: तानसेन, क्या हो गया है तुम्हें? क्या दरबार में रहकर तुमने भारतीय संगीत की शुद्धता भी खो दी?
1: गुरुदेव, इतनी भीषण गर्मी है, गला चटक रहा है।
2: मैं समझ रहा हूं तानसेन, तुम कुछ सुनना चाहते हो और साथ में तुम्हारे ये साथी भी।

0: आश्चर्य आश्चर्य संगीत है कि चमत्कार। इतनी गर्मी में मेघों का गिरना बरसना, ये शीतल फुहारें। तानसेन, सच कहा तुमने, तुम्हारे गुरु से अच्छा कौन गा सकता है? तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते तानसेन?
1: मैं आपके लिए गाता हूं सम्राट।
0: और ये
1: मेरे गुरुदेव सम्राटों के सम्राट श्री बिहारी जी के लिए गाते हैं।
0: मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया आपका संगीत सुनकर। स्वामी जी आप मुझे कोई सेवा बता।
2: स्वामी जी ने सम्राट से कहा, यह दिव्य भूमि है, श्री बिहारी जी के राज्य में किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है।
3: परंतु सम्राट ने जिद की तो स्वामी जी ने उसे वृंदावन का एक टूटा घाट दिखाया। उसमें बड़े बड़े रत्न जगमगा रहे थे। सम्राट उन रत्नों को देखकर दंग रह गया। ऐसे रत्न तो उसने कभी देखे ही नहीं थे।
2: भक्तवर नागरी दास जी ने इस कथा का उल्लेख अपने ग्रंथ पद प्रसंग माला में किया है।
3: मथुरा गजेटियर में तथा विसेंट स्मिथ ने अपने ग्रंथ अकबर द ग्रेट मुगल में भी इस घटना की चर्चा की है।
2: देश भर के संग्रहालयों में स्वामी हरिदास, तानसेन एवं पीछे खड़े सम्राट अकबर के बहुविध चित्र भी इस घटना को प्रमाणित करते हैं। नित्य वृंदावन धाम में प्रवेश करने से पूर्व स्वामी हरिदास जी अपने प्राण आराध्य ठाकुर श्री बिहारी जी की सेवा पूजा का दायित्व अपने लघु गृहस्थ भ्राता गोस्वामी जगन्नाथ जी को दे गए थे।
3: उन्हीं के वंशज गोस्वामी गण श्री बांके बिहारी जी की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं।
2: लगभग 300 वर्षों तक श्री बांके बिहारी जी का मंदिर निधिवन में ही रहा।
3: बाद में गोस्वामी गण ने पुराने शहर में श्री बिहारी जी का एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया।
2: प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार और मथुरा के अंग्रेज कलेक्टर F.S. ग्राउस ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में लिखा है,
3: श्री बिहारी जी के गोस्वामियों ने अपने शिष्यों से उस समय 70,000 रुपए एकत्र कर ये भव्य मंदिर बनवाया।
2: उसने लिखा है,
3: ये लाल पत्थर का मंदिर एक बड़ी वर्गाकार भूमि में लाल बलुए पत्थर से बना है। इसका मुख्य द्वार सफेद पत्थर का बहुत ही प्रभावशाली है।
2: इसकी कोमलता और कारीगरी तथा बहुत ही बड़े छज्जे और उनके विस्तार इसे एक मनोहारी आदर्श बनाते हैं।
3: इसकी स्थापत्य कला में मृत अतीत नहीं

0: सभ्य समाज में कहीं भी विकसित भवन कला का विकासात्मक स्थानीय भाव का दर्शन यहाँ होता है।
1: मंदिर के इस नैनाभिराम द्वार के दोनों ओर चौखंडियां हैं, ऊपर लटके हुए सीधे छज्जे और सबसे ऊपर अद्भुत कौशल से बनी छतरी जिस पर 5 स्वर्ण कलश लगे हैं।
0: अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर बड़ा जगमोहन है, जिसमें उत्सव के दिनों में श्री बिहारी जी सजे हुए बंगलों और सोने चांदी के कक्षों में विराजते हैं।
1: उसके अंदर गर्भगृह है, जहां सामान्यतः प्रतिदिन उनके दर्शन होते हैं।
0: श्री बिहारी जी के मंदिर की विलक्षण परंपराएं भक्तों को अत्यधिक आकर्षित करती हैं, क्योंकि वे भावपूर्ण हैं।
1: मंदिर में थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा आता रहता है,
0: इसलिए कि कहीं बिहारी जी को भक्तों की नजर न लग जाए।
1: नजर भक्तों की लगती है या बिहारी जी की?
0: कहा तो यही है,
1: एरे रूप के भूप सलोने, तेरी एक नजर हजारों टूने।
0: किसी भी देव प्रतिमा के ऐसे मोहक दर्शन कहीं ना मिलेंगे।
1: श्री रामकृष्ण देव परमहंस अपने जीवन काल में श्री बिहारी जी के इसी मंदिर में दर्शन करने आए थे। तब उन्हें यहाँ आध्यात्मिक स्पंदन अनुभव हुआ और वो श्री बिहारी जी का आलिंगन करने को दौड़ पड़े थे।
0: सुचिकरण श्यामल
2: ब्रज माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुना है
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है।

0: इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
5: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों

0: पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की

0: नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The government has notified 11 more international ports enabling foreign nationals holding e-visas to enter India through these designated points. The new additions include 9 land ports and 2 airports. With this, the total number of international ports facilitated

थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज़ों में। गीत को लिखा था सोनंद किरकिरे ने, संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने। आइए सुनते हैं गुरु फिल्म का ये अगला गीत, गाया है ए हरिहरन और अलका याग्निक ने।

ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे गुरु फिल्म का ये गीत। ए हरिहरन और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में गीत को लिखा था गुलजार ने। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इतिहास फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना ए हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे इश्क विश्क फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था महबूब ने और धुन बनाई थी इस्माइल दरबार ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी वार्ता के अंतर्गत बाल साहित्य में पद्य कथा के सशक्त हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर। इस विषय पर वार्ता आलेख है डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का और वाचन है राजेश शर्मा का।
5: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के लिए लिखना इतना सहज नहीं होता जितना बड़ों के लिए लिखना। बाल साहित्य लेखन में दक्ष होना हर एक साहित्यकार के लिए संभव नहीं होता, लेकिन अगर हम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उन पर ये बात लागू नहीं होती। यूं तो दिनकर जी का काव्य विविधता लिए हुए है। राष्ट्रीय चेतना और भारतीय अस्मिता के अमर कवि के रूप में वे विश्व विख्यात हैं। इतना ही नहीं, विषय वैविध्य उनके काव्य की विशेषता है। जीवंत डायरी लेखन के लिए वो आज भी जन मन में मौजूद हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 को जन्मे दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, जो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। बिहार सरकार में उच्च पदों पर रहते हुए वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर सुशोभित रहे तथा उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी रहे। उनकी लिखी गई 61 पुस्तकों में से उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। वहीं कुरुक्षेत्र के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तथा भारत सरकार सहित अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित दिनकर जी यूं तो भूषण के बाद वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, किंतु उन्होंने बाल साहित्य भी रचा है। ये बात कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। दरअसल उनके बाल साहित्य रूप का मूल्यांकन उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में होना चाहिए था। कहा जाता है कि जिस भाषा के साहित्य में बाल साहित्य का अभाव हो उस राष्ट्र एवं भाषा के साहित्यकारों को जागरूक नहीं माना जा सकता, क्योंकि बच्चे ही देश के भावी कर्णधार होते हैं। स्वस्थ बाल साहित्य केवल बच्चों का मनोरंजन ही नहीं करता अपितु उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और उन्हें एक अच्छा देशभक्त नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होता है। ये बात दिनकर जी अच्छी तरह जानते थे, तभी तो उन्होंने विविध साहित्य रचना के साथ ही बाल साहित्य को भी अपने लेखन में स्थान दिया। आवश्यक नहीं कि प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ साहित्य ही किसी साहित्यकार को प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक बने। उत्कृष्ट साहित्य की अल्प मात्रा भी साहित्यकार को शिखर सम्मान दिला सकती है, उसे अमर कर सकती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में मात्र 3 कहानियां लिखी, जिनमें से मात्र एक कहानी उसने कहा था इसने उन्हें विश्व

विश्व प्रसिद्धि दिलाई। उसी तरह दिनकर जी की भी बाल साहित्य की मात्र 3 पुस्तकें ही प्रकाशित हुई हैं, किंतु उसने कहा था कि तरह उनकी एक पुस्तक सूरज का ब्याह की एकमात्र रचना चांद का कुर्ता उन्हें हिंदी बाल काव्य के इतिहास में अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। बाल साहित्य से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने अपने आलेख में दिनकर जी का उल्लेख करते हुए लिखा है, जिन दिनों सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो बसंत और खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी जैसी वीरता और ओज से भरी कविताओं के साथ ये कदंब का पेड़ और पानी और धूप सरीखी कविताओं में प्राकृतिक सुषमा उकेर रही थीं, उन्हीं दिनों दिनकर की बाल कविताओं ने धूम मचा रखी थी। अगर उनकी कविताओं को छोड़ भी दें तो उनकी सिर्फ एक कविता चांद का कुर्ता ही उन्हें हिंदी बाल कविता के इतिहास में अमर बनाने के लिए काफी है। दिनकर जी की बाल साहित्य की जो 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, धूप छांव। सूरज का ब्याह बाल काव्य संग्रह में दिनकर जी की मात्र 9 बाल कविताएं हैं, जिनके शीर्षक हैं चांद का कुर्ता, सूरज का ब्याह, मेमना और भेड़िया, खरहा और कुत्ता, ज्योतिषी तारे गिनता था, चील का बच्चा, चतुर सुअर, बर और बालक, बालक हम्बीर तथा मिर्च का मजा। बाल काव्य संग्रह में कुल 7 कविताएं हैं, मिर्च का मजा, पढ़क्कू की सूझ, चूहे की दिल्ली यात्रा, अंगद कुदान, कर करो या कुर्र, मामा के लिए आम, झब्बू का परलोक सुधार। सही मायने में ये कविताएं पद्य कथाएं हैं, जिनमें पद्य के रूप में पूरा संवाद चलता है। बाल मन भी पहले कविता की तुकबंदी की ओर आकर्षित होता है और फिर कहानी की ओर। दिनकर जी की सभी बाल कविताओं में ऐसी रोचक कथाएं पिरोई गई हैं जिन्हें पढ़कर बच्चों को कविता और कहानी दोनों का आनंद प्राप्त होता है। सूरज का ब्याह कविता में उषा के साथ सूरज की शादी की अफवाह फैल जाती है, जिसे सुनकर सभी जीव जंतु प्रसन्न हो उठते हैं। उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से वन की पांत पांत डोली। जीव जंतुओं में खुशी की बातें चली रही थीं, तभी जल के अंदर से एक वृद्ध मछली ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए जीव जंतुओं को चेताया कि तुम सब सूरज के ब्याह की खुशियां तो मना रहे हो, लेकिन क्या तुम में से किसी ने ये सोचा है यदि सूरज का ब्याह हो गया तो कितना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो केवल एक ही सूरज है। उस अकेले की गर्मी के कारण सब व्याकुल हो उठते हैं। शादी के बाद जब सूरज के और भी बच्चे होंगे तब उन सब की गर्मी को कैसे सहेंगे। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरो, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात न भूलो, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, एक सूर्य के ही मारे हम, विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। इसलिए मछली सबको समझाती है कि अच्छा है सूरज कुआरा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। इस प्रकार दिनकर जी ने सूरज का ब्याह कविता की पंक्तियों को एक कहानी के रूप में पिरोते हुए पद्य कथा का बच्चों को आनंदित करने वाला स्वरूप प्रदान कर दिया। चांद का कुर्ता दिनकर जी की ऐसी पद्य कथा है जो किसी समय बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती थी। इस पद्य कथा के बारे में समालोचक प्रकाश मनु ने हिंदी बाल कविता का इतिहास पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी दर्ज की है। सुभद्रा जी की तरह हिंदी बाल कविता को लोकप्रिय विन्यास देने का बड़ा काम रामधारी सिंह दिनकर, R.C. प्रसाद और गोपाल सिंह नेपाली ने किया। इनमें रामधारी सिंह दिनकर का कद निसंदेह सबसे बड़ा है। एक दौर था जब उनकी चांद का कुर्ता कविता हर बच्चे की जुबान पर नाचती थी और आज भी उतनी ही ताजा लगती है। बाल कविता के समूचे इतिहास में चांद पर इतनी अच्छी बाल कविता शायद ही लिखी गई हो। चांद का कुर्ता बाल कविता में चांद अपनी माँ से संवाद करता है कि उसे इस जाड़े के मौसम में
ठंडी हवाओं और सर्दी से बचने के लिए

0: ऊन का जंगोला सिलवा दो या फिर कोई भाड़े का कुर्ता ही लेकर दे दो। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। माँ चांद की बात सुनकर चिंतित हो उठती है, क्योंकि चांद पूरे महीने में एक भी दिन एक आकार का नहीं रहता। चांद की 16 कलाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी गई दिनकर जी की ये बाल कविता भी माँ और चांद के संवादों से सुंदर पद्य कथा के रूप में पूर्ण होती है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखला ही पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। पड़क्कू की सीख बाल कविता में दिनकर जी ने एक पढ़ने वाले कोलू के बैल के मालिक के बीच सुंदर कथा संवाद कराए हैं। पड़क्कू जी कोलू में जुते बैल को देखकर आश्चर्य करते हैं कि ये बैल बिना मालिक के ही कैसे सारे दिन घूमता रहता है। यदि ये घूमना बंद कर दे तो कैसे पता चलेगा। इसी जिज्ञासा के वशीभूत पड़क्कू मालिक से इसका राज पूछ बैठते हैं। मालिक रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए बताता है कि उसने बैल के गले में जो घंटी बांध रखी है, जब तक वो बजती रहती है तो उसे पता चलता रहता है कि बैल घूम रहा है। इस पर पड़क्कू उनसे प्रश्न करते हैं कि यदि बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहे तो। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। इस पर मालिक कहता है, अभी बैल ने तुम्हारी तरह पढ़ाई नहीं की है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पड़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहां सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतक पढ़ पाया है। इस प्रकार इस बाल कविता में दिनकर जी ने हास्य का पुट समाहित किया है, किंतु रचना की दृष्टि से ये भी पूरी तरह बाल पद्य कथा के रूप में ही पूर्ण होती है। बर और बालक बाल कविता में एक बालक का अपनी माँ के साथ सुंदर संवाद ही है, जिसमें दिनकर जी ने दुष्ट के स्वभाव की विवेचना बड़े ही सहज सरल रूप में कर दी है। एक बच्चा सोते हुए बर्र को छू देता है, बर्र उसे डंक मार देता है। उंगली से खून बहता देखकर बच्चा चीख उठता है। बच्चे की चीख सुनकर रोटी बनाना छोड़कर भी माँ दौड़ी चली आई। रोटी को तवे में छोड़ बाहर की ओर दौड़ी, रोना सुन माता का हृदय अधीर हो उठा। उंगली को आंचल से पोंछ पांच माता बोली, मेरे प्यारे लाल ये औचक ही क्या हुआ। बच्चे ने कहा कि माँ मैंने तो एक बर्र को बड़े प्यार से छुआ था, किंतु उसने मुझे डंक मार दिया। माँ ने कहा कि पुत्र यही तो दुष्ट की पहचान है कि वो प्यार करने वाले को कष्ट देते हैं और कठोर से डरते भी हैं। माता बोली, लाल मेरे खलों का स्वभाव यही, काटते हैं कोमल को डरते हैं कठोर से। काटा बर्र ने तूने प्यार से छुआ था उसे, काटता नहीं जो जरा दबा देता जोर से। निष्कर्षतः दिनकर जी की प्रत्येक बाल कविता की संरचना एक पद्य कथा के रूप में ही दृष्टव्य है, चाहे वो मेमना और भेड़िया हो, चाहे खरहा और कुत्ता, ज्योतिषी तारे गिनता था, या फिर चील का बच्चा। सभी की बनावट पद्य कथा के रूप में करने की महारत दिनकर जी को हासिल है। मिर्च का मजा बाल काव्य संग्रह की सातों बाल कविताओं में यद्यपि हास्य का पुट है, किंतु हैं सभी बाल पद्य कथा ही, जिनमें परोक्ष रूप से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सीख भी समाहित है ही। और ये तभी संभव है जब कोई रचनाकार स्वयं बच्चे के नजरिए से बाल मनोविज्ञान पर पकड़ रखता हो। बच्चों की अभिरुचि के अनुकूल रुचिकर कथा वस्तु को मनोहारी रूप में प्रस्तुत करे, और ये दायित्व दिनकर जी ने बखूबी निभाया है। दिनकर जी को यदि बाल साहित्य में पद्य कथा के सशक्त हस्ताक्षर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: अभी आप हिंदी वार्ता के अंतर्गत सुन रहे थे बाल साहित्य में पद्य कथा के सशक्त हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर, इस विषय पर आलेख। आलेख था डॉक्टर दिनेश पाठक शशि का और वाचन था राजेश शर्मा का। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

यातायात नियमों का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। गंदगी से प्रदूषण फैलता है, इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में श्रावण मास के अवसर पर गंगा घाट और परियर घाट से पवित्र गंगा जल भरकर सिद्धनाथ बाबा मंदिर, लोधेश्वर धाम और जलेश्वर नाथ मंदिर के लिए हजारों शिव भक्त पैदल व डाक कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 5 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया गया है। एएसपी अखिलेश सिंह के अनुसार जिले में लगे 248 सरकारी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह सक्रिय हैं। इनके अलावा यात्रा मार्ग पर लगे करीब 6000 निजी सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। वह संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों की लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि भीड़, यातायात और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं गंगा घाटों पर पुलिस बल के साथ गोताखोर की भी तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी बिजली के पोल और तारों की जांच संबंधित विभागों से कराई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके अलावा कांवड़ियों के विश्राम स्थलों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं जिलाधिकारी घनश्याम मीना व पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह द्वारा घाटों व प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग और साफ सफाई की लगातार जांच की जा रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के साथ नरोरा और हरिद्वार बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण जिले में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर गया है, जिससे जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस दौरान अपर जिला अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने गंगा घाट क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जल स्तर बढ़ने से गोताखोर, तेजीपुरवा, करबला और हुसैन नगर जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुँच गया है। कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जहां प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तहसील प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए 5 नावें तैनात की है। इसके अलावा गोताखोर, बलासाला और पंचायत घर को अस्थायी बाढ़ राहत शिविर के रूप में सक्रिय किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत महावृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर

0: प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांस गंगा सिटी में पौधारोपण किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारी से जुड़ा जन आंदोलन बताया। अपर्णा यादव ने कहा,
1: पेड़ को हम पहले भी लगाते थे पर माँ के साथ जब जुड़ जाता है तो वो बहुत स्पेशल हो जाता है। उसका संरक्षण करना ये हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया है कि वो पेड़ लगाए और इस धरती को हरा भरा बनाए।
0: जनपद में इस अभियान के तहत लगभग 57 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, हरित उन्नाव और प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण का संकल्प लिया। जिले के निराला प्रेक्षाग्रह में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद के शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड वितरण कर बधाई दी। जहां जनपद में कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 20,265 लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 लाख निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का उपहार दिया है जिसे शिक्षक और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि आज योग्यता के आधार पर सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, इसी के कारण देश प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
3: किसानों की मेहनत और बदलती कृषि सोच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, प्राकृतिक खेती और किसानों को बाजार से जोड़ने की प्रशासन की पहल, बागपत ब्लूम को बड़ा सम्मान मिला है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 3rd नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड 2026 में डीएम अस्मिता लाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल सस्टेनेबल इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। समिट की थीम कृषि समृद्धि 2047 रही। डीएम की ओर से बागपत ब्लूम टीम, किसान प्रतिनिधियों, जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। बागपत ब्लूम के तहत किसानों को सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित न रखकर उपज की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। चिया बीज, अलसी, मोरिंगा पाउडर, सरसों का तेल, ऑर्गेनिक शहद, गुड़, खांडसारी, देसी घी और सिरका समेत कई स्थानीय उत्पाद एकीकृत ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल से जिले के 13 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO जुड़े हैं। प्रशासन का उद्देश्य फील्ड टू मार्केट मॉडल के जरिए किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाना है। राष्ट्रीय सम्मान को बागपत के किसानों के नवाचार और कृषि क्षेत्र में बदलती तस्वीर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशुओं की बेहतर निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बागपत, पिलाना और बड़ौत विकास खंडों के स्वास्थ्य केंद्रों को कार्डियो टोकोग्राफी यानी CTG मशीन उपलब्ध कराई गई है। यह अत्याधुनिक मशीन गर्भस्थ शिशुओं की हृदय गति यानी फीटल हार्ट रेट की नियमित और सटीक निगरानी करती है। इसके साथ ही मशीन गर्भाशय में होने वाले संकुचन की भी जाँच करती है। इससे गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति पर नजर रखने और किसी भी संभावित जोखिम या जटिलता का समय रहते पता लगाने में चिकित्सकों की मदद करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार CTG मशीन विशेष रूप से प्रसव पूर्व उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी में उपयोगी साबित होगी। जांच के आधार पर चिकित्सक समय पर आवश्यक चिकित्सीय निर्णय ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को बेहतर उपचार कराया जा सकेगा। CMO तीरथ लाल का कहना है कि इस सुविधा से गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी, साथ ही मात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी। बागपत परिवहन विभाग ने जुलाई महीने में राजस्व वसूली के साथ सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर भी बेहतर प्रदर्शन किया है। विभाग ने जुलाई में शासन द्वारा निर्धारित 8,50,00,000 रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 8,64,00,000 रुपए का राजस्व जुटाकर लक्ष्य को पार कर लिया। पिछले वर्ष की तुलना में भी यह राजस्व में बढ़ोतरी की गई है। जुलाई तक पिछले वर्ष राजस्व वृद्धि 16,64,000 रुपए थी, जो इस वर्ष बढ़कर 25,27,000 रुपए तक पहुंच गई। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने शक्ति बढ़ाई है। 1 अप्रैल से अब तक यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 13 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों, बिना परमिट संचालन, बिना वैध दस्तावेज वाहन चलाने, ओवर स्पीड, बिना लाइसेंस ड्राइविंग और हेलमेट व सीट बेल्ट के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

0: एआरटीओ विपिन कुमार के नेतृत्व में विभाग वाहन जांच कर एवं परमिट सत्यापन और फिटनेस निरीक्षण के साथ डिजिटल सेवाओं को भी मजबूत कर रहा है। विकास वन सभागार में डेयरी विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वदेशी गोसंवर्धन योजना के तहत ई लॉटरी से चयनित 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा गोसंवर्धन योजना के लाभार्थियों को अनुदान के चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में पशुपालकों को डेयरी और पशुपालन से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर डीएम अस्मिता लाल ने कहा कि डेयरी व्यवसाय किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना है। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मेरठ मंडल कार्यालय से वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक अर्चना सिंह ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव के जीरो वेस्ट महोत्सव को लेकर सूचना विभाग का सोशल मीडिया चैलेंज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अभियान के तहत अब तक 1000 से अधिक व्यक्तिगत डिजिटल पोस्टर तैयार किए जा चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, डीपी व स्टेटस के जरिए लोग भक्ति भी, प्रकृति भी और आस्था भी, जिम्मेदारी भी का संदेश दे रहे हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी उन्नाव और बागपत जिलों की खबरें।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है पुनर्चक्रण, आलेख और वाचन है वंदना शर्मा का।

पुनर्चक्रण अर्थात व्यर्थ हो जाने वाले पदार्थों का पुनः प्रयोग करना एवं उपयोग में ली गई वस्तुओं को उनके उपयोग काल के उपरांत उनका स्वरूप बदलकर उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाना ही पुनर्चक्रण की प्रक्रिया है। पुनर्चक्रण या यूं कहें कि रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया पर्यावरण हितैषी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये प्रक्रिया एक हद तक जल वायु एवं मृदा प्रदूषण को रोकने में सहायक है। रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया से ताजे कच्चे माल के उपयोग को कम कर वायु प्रदूषण जो कचरे के भस्मीकरण के कारण होता है रोका जा सकता है। वहीं कचरे की भराई से गड्ढों का भर जाना या जल स्रोतों की गहराई में कमी आ जाने से जल प्रदूषण रोका जा सकता है। वहीं पुनर्चक्रण की प्रक्रिया से व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर एकत्रित होकर भूमि को बंजर व अनुपयोगी बनाने से रोकने की दिशा में एक सार्थक कदम है। पुनर्चक्रण आधुनिक अपशिष्ट पदार्थों को कम कर उन्हें पुनः उपयोग में लाने की परंपरा का क्रमबद्ध व पर्यावरण हितैषी तरीका है और ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हो रहा है। रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया से पर्यावरण के तीनों घटकों जल वायु व मृदा को सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पदार्थों उपकरणों घरेलू अपशिष्ट आदि की जोखिमी गुणवत्ता को दूर कर उसे पुनर्व्यवहार में लाया जा सकता है। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया बेहद खर्चीली प्रक्रिया है, बावजूद यदि हम इसका दूसरा पहलू देखें तो इसके कई फायदे हैं। ये कई बेरोजगार युवाओं की आमदनी का साधन बन सकता है व पर्यावरण हित की उपयोगिता को हर तबके के लोगों तक आसानी से पहुंचाकर पर्यावरण सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बचत होती है। इस विषय के संबंध में ऊर्जा सूचना प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि कागज की एक मिल या फैक्ट्री पुनरावर्तित कागज से कागज बनाने में 40% से कम ऊर्जा का उपयोग करती है। वहीं एल्युमिनियम के मामले में यह बचत 95% तक हो सकती है जो पर्यावरण के हित में है। रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया में मुद्रा की भी बचत होती है क्योंकि कच्चे माल की खरीद व उत्पादित पदार्थ बनाने में हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। वहीं रिसाइक्लिंग के अंतर्गत कच्चे माल की कीमत नगण्य होकर उत्पाद की कीमतों को काफी कम कर देती है जिससे कच्चे माल का खनन व दोहन एक तरह से कम हो जाता है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रहकर पर्यावरण के नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने में

0: सहायता करता है। वहीं रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया वृक्षों की निर्मम कटाई को भी रोकती है। इस विषय के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों के अनुसार कागज बनाने वाली कंपनियां कागज की लुगदी निर्माण में बृहद स्तर पर वृक्षों और जंगलों की कटाई करती हैं, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हो जाती है व भू अपरदन से भूमि बंजर हो जाती है। वृक्षहीन भूमि धरती के तापमान में बढ़ोतरी का एक मुख्य कारण है, जो पर्यावरण के मौलिक स्वरूप को नष्ट कर देता है। वहीं कागज का रिसाइक्लिंग वृक्षों की कटाई को रोकता है, जिससे पर्यावरण संतुलन को सहारा मिलता है। कार्बनिक पदार्थों की रिसाइक्लिंग जैविक खाद बनाने में भी कारगर सिद्ध हो रही है, जिसके इस्तेमाल से मृदा के पोषक तत्वों की कमी की भरपाई में सहयोग मिलता है और इसके फलस्वरूप मृदा अपने मौलिक स्वरूप में बनी रहती है। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया से पर्यावरण को कई परोक्ष व अपरोक्ष फायदे हैं। इससे ऊर्जा की बचत होती है, पेड़ों की कटाई रुकती है, कच्चे माल के उपयोग में कमी के खनन व दोहन में कमी आती है। ये धरती पर गड्ढों तालाबों इत्यादियों की भराई को रोककर भू जल स्तर को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। यदि इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाए तो ये संसाधनों को बचाकर पर्यावरण सुरक्षित करती है। तो ये कहना उचित होगा कि रिसाइक्लिंग कच्चे माल की खपत, वानिकी, खनन, दोहन को सीमित कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन व प्रदूषण को कम करने की ओर एक सकारात्मक कदम है। अंत में ये कहना चाहूंगी, अगर धरती को बचाना है तो पर्यावरण सुरक्षा को लक्ष्य बनाना है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, जिसका विषय था पुनर्चक्रण। आलेख और वाचन था वंदना शर्मा का।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं काव्यात्मक संवाद। विषय है श्रम की महत्ता। वार्ताकार हैं मनमोहन गुप्ता अभिलाषी और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
6: श्रोताओं, मानव जीवन विविध घटनाओं का, विविध उतार चढ़ावों का, विविध संदर्भों को लेकर के चलता है। मानव होने का मतलब ही यह है कि हम जीवन को विभिन्न आयामों में जीते हैं, विभिन्न मापदंडों के साथ जीते हैं और विभिन्न संज्ञाओं के साथ जीते हैं। चाहे संज्ञाएं हैं, प्रतीक हों, संबंध हों, संस्कार हों, सरोकार हों, मानव जीवन के आसपास अनगिनत ऐसे प्रेरक प्रसंग होते हैं, प्रेरक घटनाएं होती हैं, जिनसे जीवन की सार्थकता बनती है। आज हम पैदा हुए और जब हम अंतिम सांस लेते हैं तो पहली और अंतिम सांस के बीच की वो पूरी कहानी जो जीवन को जीवन बनाती है, चाहे उसमें उतार चढ़ाव हो, चाहे उसमें घटनाएं हो, चाहे उसमें संदर्भ हो, किसी न किसी तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और प्रभावित होते भी रहते हैं। शायद ये जो अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर संबंध है, इसी से समाज भी बनता है। और कहते हैं कि समाज दर्पण होता है, एक व्यक्ति ने कैसा जीवन जिया है इसकी अगर परिभाषा जाननी हो, प्रमाण जानना हो, तो वो समाज कुछ ही संदर्भों में बता देता है कि व्यक्ति अच्छे हृदय का था, व्यक्ति सहृदय था, व्यक्ति श्रमसेवी था, साहित्यकार था। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, समाज उसको दूर से देखता रहता है। इन संदर्भों में मानव जीवन में श्रम की जो महत्ता है, उसको भी कई जगह और कई तरीके से रूपायित किया गया है, संज्ञायित किया गया। तो आज मानव जीवन में श्रम की महत्ता के संदर्भ में कुछ विचार जानने के लिए मेरे साथ हैं श्री मनमोहन गुप्ता साहब, अभिलाषी जी के नाम से हम

0: जानते हैं, बड़े रेडियो से जुड़े हुए हमारे साथी रहे हैं, और यूँ तो प्राध्यापक रहे, शिक्षा उनका ध्येय था, लेकिन समाज सेवा और साहित्यिक सृजन भी उनके जीवन का अंग रहा है। तो अभिलाषी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार
1: धन्यवाद
0: जी।
1: साहब।
0: तो जीवन में श्रम जैसी जो संज्ञा है,
1: जी
0: उसके महत्व पर मैं अब जानना चाहूँ, तो
1: बिल्कुल,
0: कैसे आप रूपायित करेंगे
1: आप
0: इसको?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंह साहब। बिना श्रम के तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, और उसमें रिक्तता रहती है यदि हमारे जीवन में श्रम नहीं है। तो श्रम करने से ही मनुष्य वास्तव में कुछ बनता है। अगर वो श्रम नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा।
0: जी
1: और बिना श्रम करने वाला व्यक्ति, उसकी समाज में क्या स्थिति होती है? ये तो बड़ा आलसी है,
0: हाँ,
1: कुछ मेहनत करता ही नहीं
0: मतलब
1: है।
0: संज्ञाई आलसी होने का मतलब
1: हाँ
0: ही श्रम रहित है
1: हाँ
0: जी।
1: और जब वो आलसी की संज्ञा से अभिहित होगा
0: हाँ
1: तो समाज में उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा?
0: हाँ
1: इसलिए हमारे जीवन में श्रम का बहुत महत्व है। हम यदि श्रम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। देखिए, श्रम, मैं तो ये कहूँगा कि श्रम साहब के शायद हमारे जीवन का एक सफल होने का मूल मंत्र है। अगर हमारे पास श्रम हमने किया है जीवन में, तो निश्चित रूप से हमें गंतव्य मिलेगी और हम उस लक्ष्य तक जा सकेंगे
0: आगे
1: आगे।
0: लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो
1: हाँ
0: मतलब जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर
1: हाँ
0: अगर जीवन को जीना है, जीवन को
1: हाँ
0: समझना है, जीवन
1: हाँ
0: में प्राप्त जो ध्येय
1: हाँ
0: लक्ष्य हैं, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त
1: बिल्कुल,
0: करना है,
1: हाँ
0: तो श्रम का जो रास्ता है वो ही सार्थक है,
1: बिल्कुल सही
0: ये
1: है।
0: आप कहना चाह रहे हैं।
1: अच्छा, और ये तो कहा भी जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।
0: ये हम
1: हाँ, ये
0: सुनते हैं।
1: तो हम अब तक पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और बुजुर्ग भी इस बात को कहते हैं कि भैया, आप मेहनत करोगे तो तुम कुछ बन जाओगे, श्रम करोगे तो कुछ बन जाओगे। परिश्रमी व्यक्ति अपने जीवन को जो है श्रम रूपी आग में तपा करके उसे सोने की भांति मूल्यवान और चमकदार बना लेते हैं, अगर उसमें श्रम करने की भावना है, श्रमजीवी है। तो निरंतर परिश्रम किसी व्यक्ति, जाति या देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, ये स्वाभाविक है। श्रम के बिना सफलता तो एक प्रकार से स्वप्न है, अगर हम श्रम नहीं करेंगे तो।
0: यदा कदा ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो गए, कम श्रम साध्य जीवन पा करके वो उस फलक पर पहुंच गए, लेकिन इससे कहीं अगर मैं ये कहना चाहूं कि एक अच्छा मकान जिसके गगूरे पे जो ईंटें लगी हैं, उससे नीम में लगी हुई ईंट का महत्व तो कम नहीं होता।
1: बिल्कुल नहीं
0: तो
1: होता।
0: सफलता भले ही मिल गई हो शॉर्टकट
1: हाँ
0: से या
1: हाँ
0: अनायास या कम
1: हाँ
0: उससे,
1: हाँ
0: लेकिन इससे श्रम की महत्ता कम नहीं हो जाती। तो
1: जी
0: व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये रास्ता शायद उसको जो मिल गया है मेरे
1: हाँ
0: लिए भी वो श्रेयस्कर होगा।
1: अगर जीवन में श्रम किया है तो देखिए कि इमारत जो होती है उसके प्रस्तर कैसे कुटते हैं, पुटते हैं, और फिर मजबूती से इमारत
0: जी,
1: जो है
0: खड़ी
1: खड़ी
0: रहती
1: होती
0: है।
1: है, फिर हमें कंगूरे दिखाई देते हैं और
0: हाँ
1: हम कहते हैं कि देखिए कितनी अच्छी
0: सुंदर
1: है।
0: है।
1: हाँ, ठीक इसी तरीके से आज हमारे जीवन में श्रम का बहुत विशेष महत्व है। इसे हमें युवा पीढ़ी को भी इसे पहचानना चाहिए। और आजकल विशेष रूप से क्या हो गया है कि युवा पीढ़ी एकदम अपने पायदानों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है और आकर के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, और ये चाहती है कि मैं स्वर्णिम शिखर पर आसीन हो जाऊं। ये संभव नहीं है। जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, आपको अपना अनुभव नहीं होगा, परिपक्वता नहीं आएगी, तो आपको सफलता कैसे प्राप्त होगी?
0: जी, मतलब वो कहते हैं कि ऋतु माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए
1: अतुआई फल,
0: फल।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: जीवन में जब आप तपते हैं, जीवन में आप संघर्ष करते हैं, जीवन में जब आपको अनुभव मिलता है, तो वो शॉर्टकट नहीं
1: नहीं,
0: होता। वो जो आनंद आता है वो समय ही उसका
1: बिल्कुल
0: परिचायक
1: सही
0: है,
1: है, बिल्कुल सही
0: उसमें
1: है, क्योंकि
0: कि
1: अनुभव मिला उसमें।
0: अनुभव मिला।
1: और जीवन में श्रम ही मानव जो है उस

0: का आधार होता है। श्रम करना एक महान गुण है सिंह साहब। जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों का अपना श्रम का भी विशेष महत्व होता है। दो तरह के होते हैं हम, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। और ये दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। देखिए, प्रकृति भी हमें परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। और जैसे कि आप अपन सामान्य जीवन में देखें, चींटियां हैं, चिड़िया है, मधुमक्खियां हैं, क्या ये श्रम नहीं करती? चींटी को देखा है, एक
1: दाने को ले जाने के लिए,
0: दाने को कहां तक ले जाती है?
1: 10 बार गिरेगी, लेकिन जब तक सफल नहीं हो जाएगी छोड़ेगी नहीं।
0: बिल्कुल ठीक। इसी तरह से जो है, सुबह जब प्रभात काल की किरणें, सूर्य की किरणें, रश्मियां जो है, कलरव होता है, चिड़िया है, तो चिड़िया भी हमें संदेश देती है
1: कि उठो, जागो,
0: श्रम
1: करो।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक एक चीज, जैसे संज्ञा शास्त्रों में भी लिखा है, साहित्य में भी लिखा है कि ये जो शरीर है ये साधन है।
0: बिल्कुल।
1: और साधन से जब तक आप श्रम नहीं करोगे तो ये आपको आनंद देने की बजाय आपको परेशानी करना। जो श्रम करते हैं उनको कभी आपने नहीं देखा होगा थक गया, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। आप उस मेहनत कश मजदूर से देखो कि पूरा दिन श्रम करके और दो सूखी रोटी खा करके भी कितनी गहरी नींद सो जाता है, और एक जो श्रम नहीं कर रहा उसको नींद लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं।
0: देखिए आप के श्रम, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, के श्रम से ही सम्मान जगत में, समाज, राष्ट्र सब बनते हैं। और बिन श्रम के इंसान पंगु है, सुख सब उसको खलते हैं। तो ये
1: जी ये पंक्ति आपने तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, हमारे श्रोताओं को सुना
0: दीजिए साहब, और आगे देखें बढ़ाएं कि श्रम के बिना अधूरा जीवन, श्रम के बिना अधूरा जीवन कोई घास नहीं डाले। यदि श्रम नहीं है तो कोई आपको लिफ्ट नहीं देगा। श्रम के बिना अधूरा जीवन कोई घास नहीं डाले, और श्रम करते इंसान ही पथ पर अपना जीवन पाले, उनका जीवन स्वर्णिम होगा। कहीं नहीं सम्मान मिलेगा, यदि श्रम नहीं है तो कहीं नहीं सम्मान मिलेगा। बिन श्रम के इंसान को आलस्य भरा, जिसमें जीवन नफरत मिले जहान को, जान में उसके बड़े बड़ा आलसी है। तो श्रम का बहुत अपने आप में महत्व है। आप देख लीजिए, श्रम करती जो है अपना महिलाएं हैं, मजदूर हैं, कितना श्रम करती हैं, श्रम करके अपना जो बोझा ढोती हैं, ऊपर तक ही पहुंचती हैं।
1: लेकिन एक समय था जब ईमानदारी और श्रम की महत्ता थी, लोग उसको मतलब महत्व भी देते थे और उसका समाज में स्थापित मूल्य भी था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे कुछ जो श्रम साध्य जीवन के अंग थे या ऐसे काम थे, तो उनको थोड़ा हम हेय दृष्टि से देखने लगे। तो ये जो गिरावट आई, ये जो नजरिया बदला, इसके पीछे आप क्या मानते हैं?
0: इसके पीछे सिंह साहब लगता है हमारा जीवन मूल्य गिरे। अब हम उन जीवन,
1: मतलब उन मूल्यों को नहीं जी रहे जो जो उसके पीछे के महत्व को समझते थे जी,
0: और हम उससे भ्रमित होकर के और उस ओर जो है दूर होते जा रहे हैं। और उसी के कारण है कि हमारी धारणा ये बन गई है कि जो अरे भाई ये तो जो है ठेला चला रहा है, अरे ये तो रिक्शा चला रहा है, अरे वो ठेला चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, श्रम कर रहा है और श्रम से धनोपार्जन कर रहा है,
1: और ईमानदारी उसके बेस में है। भाई, श्रम के साथ ईमानदारी भी जुड़ी हुई है। तो पहले जो श्रम और ईमानदारी से प्राप्त धन का महत्व ज्यादा होता था और लोग उसको इज्जत से देखते थे। ये नजरिया कहीं बदला है।
0: बिल्कुल। आज आप ऑफिस में भी मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यार ये तो सुबह का आता है शाम तक लगा ही रहता है, अरे अब ऑफिस का टाइम हो गया, अब घर क्यों नहीं जाता है? लेकिन जो श्रमशील व्यक्ति होगा उसे ये नहीं है कि मेरा ऑफिस का टाइम 5 बजे का है तो मैं तो
1: वो काम को वरीयता देता है।
0: काम पूरा करके जाऊंगा, चाहे 6 बजे चाहे 7 बजे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा समय निर्धारित है।
1: तो अब ये जो जीवन मूल्य अगली पीढ़ी में जा रहे हैं,
0: जी
1: अगली पीढ़ी इसको देख रही है आज, हम अच्छा है कि
0: हाँ
1: हमारी आय

0: भी है,
1: जी
0: साधन अच्छे हुए जीवन
1: हाँ
0: जीने के,
1: हाँ
0: सुलभ भी हुआ है जीवन,
1: बिल्कुल सही
0: सुगम
1: है।
0: हुआ है,
1: हाँ
0: लेकिन इससे जो नजरिया जीवन की वास्तविकताओं से हट करके कहीं शॉर्टकट की जो शुरुआत में बात हम
1: जी
0: चली थी
1: हाँ,
0: कि फिर पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते
1: पीढ़ी को
0: हैं?
1: हम ये कहें कि भाई श्रम से आप दूर नहीं जाओ। अगर आप श्रम से दूर होने का प्रयास करोगे और चाहोगे कि बहुत समय तो बिना परिश्रम मेहनत किए हुए ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। आज देखिए जो वास्तव में मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, जगह जगह पुस्तकालय खुले हुए हैं और बहुत अच्छे उनमें प्रतियोगिताओं के लिए, आगे कंपटीशन के लिए बढ़ने के लिए नई नई
0: हाँ,
1: जो है।
0: एक वर्ग जो युवाओं का है वो उसमें भी लगा हुआ है,
1: हाँ
0: और उससे जब छलावा होता है तो बहुत सारे
1: हाँ
0: आंदोलन भी निकल करके आते हैं और
1: हाँ
0: उनको समाज रेखांकित भी करता है।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: है
0: जो श्रम साध्य समाज उसके साथ है,
1: जी।
0: लेकिन फिर भी अब जैसे गीता में श्रम को लेकर के बहुत कहा गया है, कृष्ण ने गीता में
1: बिल्कुल
0: श्रम
1: सही
0: की
1: है
0: बड़ी महत्ता स्थापित की है।
1: बिल्कुल
0: तो गीता के माध्यम से, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको समाज का हर वर्ग स्वीकार करता है, उसको
1: जी।
0: मान्यता देता है, तो ऐसी जो बात जो हम गीता में भी कहा जा
1: बिल्कुल
0: रहा है
1: सही है।
0: श्रम के महत्व को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को उसे फिर से अपने जीवन में लाना चाहिए? जी
1: बिल्कुल गीता में जो बात कही गई है बिल्कुल कृष्ण भगवान ने बिल्कुल सही कही थी कि भाई देखो हमारा जो जो कर्तव्य है, कर्म है, हम अपने कर्म को करें और कर्म में कहीं ये नहीं हो गया या हमारा स्वार्थ सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है,
0: कोई कोताही नहीं।
1: नहीं कतई नहीं। जो हमारा कर्म है वो हमें तो करना ही है। ये भाई, अरे भाई ये तो मेरे मैं कैसे
0: जो
1: किस
0: जीवन में एक बार जो आपके फर्ज में आ गया, आप
1: हाँ
0: उससे च्युत नहीं हो सकते, उससे
1: हाँ
0: आप अलग नहीं हो सकते, उससे विरक्त नहीं
1: बिल्कुल
0: हो सकते,
1: अलग होना भी नहीं
0: आप
1: चाहिए।
0: उसको पूरा करना ही आप
1: हाँ
0: शायद जीवन
1: यदि
0: का धर्म है।
1: आप अलग होते हैं तो जीव श्रम का जो महत्व है और वो है उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर श्रम हमें अनुशासन भी सिखाता है और यही हमारी क्षमताओं को परिमार्जित करता है और उसके अलावा कठिन परिश्रम से ही हमें सफलता प्राप्त होगी। हम ये चाहें कि हम बिना श्रम के ही आगे बढ़ जाएं तो वो उसमें आगे उसे सफलता नहीं मिल पाएगी, आगे उसमें वो गुण नहीं आ पाएगा जो श्रम से आता है, मेहनत से आता है। परिश्रम आदमी करे, खूब परिमार्जित हो तो निश्चित रूप से वो
0: आपने श्रम को अनुशासन से जोड़ के बात की, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे जो हमारी देश की सीमा पर जो प्रहरी है, जो
1: जी
0: सैनिक
1: जी जी
0: है,
1: जी जी
0: अगर वो इन चीज़ों को, अनुशासन को, श्रम को और अपने ड्यूटी को प्राथमिकता नहीं दे तो क्या अंजाम होगा? क्या हम आज यहाँ चैन से सो
1: बिल्कुल
0: सकते
1: हम
0: होंगे?
1: सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। देखिए उनको इसी वास का तो प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे कैसी भी गर्मी हो, कैसी भी सर्दी हो, कैसी भी आपको भूख प्यास लग रही हो, उसे रोकिए और अपना जो फर्ज है सामने देखिए कि कहीं दुश्मन हमारी तरफ जो है बड़ा चला जो आ रहा है, हम उसको रोकें, हम इस ओर ध्यान न दें कि अरे हम यहाँ तो हमें सर्दी लग रही है जम्मू में या कहीं और क्षेत्र
0: हाँ, जो
1: पे।
0: बड़ी
1: हाँ
0: विकट परिस्थितियों में
1: हाँ
0: सीमाएं तो
1: हाँ
0: हमेशा
1: लद्दाख की
0: परेशानी।
1: तरफ, उसकी तरफ वहाँ बर्फ में 3-3 फुट में वो दबा, आधा जो है दबा हुआ है किसान, लेकिन वो परवाह नहीं करता, अपना कर्तव्य वो समझता है और वास्तव में श्रम जो है साध्य है।
0: जी, तो
1: और
0: क्या कहेंगे चलते चलते कि जीवन में श्रम के महत्व को जाने पहचाने और ईमानदारी, अनुशासन और अपनी ड्यूटी के प्रति अगर हम सजग हैं
1: बिल्कुल सही है,
0: तो फिर इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं
1: कोई
0: है,
1: सवाल ही
0: जीवन में
1: नहीं उठता
0: हमारे
1: है।
0: सारे संघर्ष भी
1: हाँ
0: समाप्त हो जाते हैं और सारी
1: हाँ
0: जो कहें कि जो वो होती है ना जिसमें हम एक दूसरे की वो करते हैं, कमियां दिखती
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: जीवन
1: जी
0: में, वो भी शायद ना देखें अगर हम अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं तो।
1: बिल्कुल सही है। और देखिए भारत में तो श्रम कल्याण और पोर्टल, ई श्रम पोर्टल एक चलाया गया है
0: जी
1: जो कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों का उसे बाकायदा डेटा वाइज तैयार करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने अधिकार दिया है। तो ये ई श्रम पोर्टल भी चलाया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि श्रम का महत्व है

0: है ना, इसीलिए ही भारत सरकार ने उसे
1: मतलब
0: चलाया है।
1: आधुनिक उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जहां श्रम
0: हाँ
1: के महत्व को स्थापित किया है उसमें। तो
0: बिल्कुल
1: चलते चलते क्या कहेंगे, श्रमशील जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, वास्तविक
0: बिल्कुल,
1: जीवन है।
0: श्रमशील जीवन ही वास्तविक हमारा जीवन है। यदि हमारे जीवन में श्रम की भावना नहीं है, परिश्रम करने की भावना नहीं है, लगन नहीं है, कर्म और निष्ठा हमारे अंदर नहीं है,
1: तो
0: तो हमारा
1: हमारी
0: निष्फल है जीवन।
1: युवा साथियों से क्या कहना
0: युवा
1: चाहेंगे,
0: साथियों
1: क्योंकि
0: से
1: आप
0: मैं
1: शिक्षक भी रहे हैं और
0: जी हाँ
1: शिक्षक और युवा का बहुत बड़ा
0: जी
1: संबंध रहता है, तो क्या कुछ
0: बिल्कुल,
1: चलते
0: शिक्षक
1: कुछ।
0: तो हमेशा अपनी जो है अध्ययन उसको कराते समय भी यही कहता रहा विद्यार्थियों को कि भाई देखिए आप श्रम से मुंह न मोड़ें,
1: हाँ,
0: मेहनत करें, श्रम करें।
1: जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है।
0: हाँ, शॉर्टकट नहीं। और ये आजकल जो चल गया है ना
1: हाँ
0: कि अच्छे संदर्भों के राइटर्स की किताबों को नहीं पढ़ते हैं और पासबुक
1: हाँ
0: ले ली, तो
1: हाँ
0: ये वही वही है शॉर्टकट वाला। अरे
1: हाँ
0: आप पासबुक से क्यों पढ़ रहे हो, आप विभिन्न अच्छे
1: टेक्स्ट
0: राइटर्स
1: से
0: की,
1: पढ़िए, टेक्स्ट से
0: हाँ
1: पढ़िए।
0: अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें, संदर्भ पुस्तकें
1: तो कोई
0: पढ़ें तो आप
1: कोई
0: आगे जा
1: दो
0: सकते
1: दो
0: हैं।
1: लाइन कोई कविता की कह के अपने इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहें, जिसमें आपने कुछ ऐसा लिखा हो कि
0: क्या
1: भाई।
0: बताएं साहब, मैं तो क्या कहूँ आपसे, समाज में श्रम का महत्व बहुत है, बिन इसके सब सूना है, मान और सम्मान राष्ट्र में श्रम से मिलता दूना है। अरे खाली माली श्रम कर पेड़ लगाता, माली माली श्रम कर पेड़ लगाता, रोज सींचता फुलवारी, और कभी नहीं कोई रह जाए प्राणों से लगती प्यारी, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। बिन श्रम के कुछ काम नहीं होता, बिन बिन श्रम के कुछ काम नहीं होता, ऊपर उधर नहीं भर पाता है, और श्रम करके इंसान का जीवन खुशहाली ले आता है,
1: क्या बात है, क्या
0: खुशहाली ले आता
1: जी जी
0: है।
1: तो मतलब अगर हम श्रम करते रहेंगे तो सार्थकता हमें मिलती रहेगी। कोई ऐसा
0: बिल्कुल।
1: नहीं है कि समाज में हम श्रम करें,
0: और मैं तो यहां तक
1: अनुशासन।
0: कहूंगा कि जीवन में श्रम करना ही है, उधर उसी से भरता, और बिन श्रम जीवन रहे अधूरा, और वह भी उससे डरता, वह भी उससे डरता।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: इसलिए
1: बात
0: हमें जीवन में श्रम का महत्व पहचानना चाहिए, और श्रम का ही जो है जीवन व्यतीत करने की भावना रखनी चाहिए, तभी हम इस जीवन पथ की जो राह है उस पर अब आगे बढ़ करके सफल हो सकते हैं।
1: जी। तो श्रोता बंधु, आप थे मनमोहन गुप्ता अभिलाषी जी, साहित्य के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से आपको ये बता रहे थे कि जीवन में श्रम बहुत महत्वपूर्ण है। बिना श्रम के न कोई प्रेम है, न कोई अनुशासन है, और न कोई जीवन की सार्थकता है। तो अगर हम जीवन में श्रम को महत्व देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि जीवन बहुत सार्थक हो जाता है।
0: नहीं अब
1: और
0: जैसे
1: कृष्ण
0: देखिए,
1: और गीता के
0: हाँ गीता
1: माध्यम।
0: में भी तो कृष्ण भगवान ने कर्म करने पर विशेष जोर दिया था, मानव शरीर मिला है तो श्रम का कार्य करना हम अत्यंत आवश्यक होता है। जो पुरुषार्थ करता है वही पुरुष है, और जिसने भी वो जो है कार्य किया है, श्रम किया है, और वह सफल होता है। ये जितने भी कारखाने और वैज्ञानिक विकास जो होते हैं वो सब श्रम का ही तो परिणाम है, श्रम ही उनकी नींव है, और बिना श्रम के तो
1: जी
0: ये जैसे कि इमारत नहीं खड़ी हो पाती है ना, तो हमारे जीवन की जो सफल इमारत है ऊंची, जिस पर गगनचुंबी जो यश और वो वैभव यदि हम देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से
1: जी
0: श्रम को अपनाएं, और
1: जी
0: श्रम ही हमारे
1: जी
0: जीवन में
1: तो
0: बहुत महत्व रखता है।
1: इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचार के साथ कि जीवन में श्रम की महत्ता है, हम जीवन को जिएं, समझें और देखें, तो निश्चित तौर पर हर जो प्रेरणा है वो हमको कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी। अभिलाषी जी, आप आए और विचार से, वाणी से आप हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।
2: काव्यात्मक संवाद के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्रम की महत्ता विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार थे मनमोहन गुप्ता अभिलाषी, इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कुछ गैर फिल्मी गजलें। ये पहली गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ज्वेल थी फिल्म का ये गीत। लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु फिल्म से, आवाज़ें एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था जीवन मृत्यु। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जीवन धारा फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है SP बालासुब्रमण्यम ने।

खुशबू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कोरा कागज फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

किनारा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है देश प्रेमी।

देश प्रेमी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, बोल थे आनंद बख्शी के और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं झील के उस पार फिल्म से, आवाज है किशोर कुमार की।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था झील के उस पार। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को फिल्म अभिलाषा में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म से, गाया है आशा भोसले ने।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए सुनवाते हैं अगला गीत अखियों के झरोखों से, फिल्म से, गाया है हेमलता और साथियों।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

FM 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं।
1: हेलो,
2: नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो दोसा मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मंत्र से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और रेडियो सुनना मेरा शौक है।
0: जी, और इस शौक को पूरा आप करते ही हैं और हमारे कार्यक्रमों में समय समय पर फोन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो आज पसंद क्या रहेगी आपकी?
2: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गाने के बोल इस तरह हैं, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है कार्यक्रम में। इंद्रवान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं? ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और यहाँ तो हमारे जिले में छह छह सात जगह में वो आज रेड अलर्ट घोषित किया गया कि पानी भीषण वर्षा होने की संभावना है, बादल चमक, ये मौसम इस टाइप का बताया गया है मैडम। ऐसा ही मौसम विभाग वाले ठीक बताते हैं।
0: जी,
1: और आपको आगामी स्वतंत्रता दिवस की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
1: और
0: आज
1: जैसे
0: पसंद भी
1: जी
0: बता
1: मैडम,
0: दीजिए।
1: जी मैडम, आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य ही अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है उपकार और गीत के बोल है, मेरी देश की धरती सोना गुले हीरा मोती।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मैं राजा राम करकर गांव भाई पोस्ट बरारी से बोल रहा हूँ जी, मथुरा।
0: स्वागत है कार्यक्रम में। और देखिए, आप बरारी से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, बरारी के ग्राम पास है भाई राम।
0: अच्छा, तो आपके गांव में जो पेड़ों पर झूला डालकर इस महीने में महिलाएं झूला झूलती हैं,
1: हाँ
0: अभी डाले
1: जी,
0: जाते हैं या नहीं?
1: अभी भी डालती हैं बच्चियां
0: अच्छा।
1: और झूला झूलती हैं
0: और वो
1: जी।
0: डबल झूला भी होता है, सिंगल भी
1: हाँ
0: रहता है, डबल भी रहता है, जहाँ दो लोग एक साथ झूला झूल सकते हैं।
1: हाँ, डबल भी होता है।
0: हाँ, तो अभी वो भी चलता है वहां पर?
1: वो भी चलता है। बड़ी लड़कियां डबल झूला भी झूलती हैं, छोटी छोटी बच्चियां सिंगल पे झूलती
0: और सावन की
1: हैं।
0: मल्हार?
1: मलाड गाती हैं वो, जिनसे जैसा बनता है वैसे आती हैं। बड़ी बड़ी
0: अच्छा,
1: गा की
0: जी जी
1: बच्चियां
0: जी
1: जाना
0: तो मतलब हम अभी उम्मीद कर सकते हैं कि सावन का जो पहले आनंद रहा था, वो
1: वो अभी
0: अभी
1: भी है
0: कहीं कहीं गांव में दिखता
1: गांव में,
0: है।
1: अभी अभी भी है गांव में।
0: अच्छा, तो ये गांव की जो सौंधी सौंधी खुशबू है, जिसमें हमारे भारत की संस्कृति रची बसी है, ये कहीं बिखरे नहीं, कहीं गुम ना हो, बस हम तो यही कामना करते हैं। और ये आज आपने कार्यक्रम में फोन किया है, तो पसंद भी जानना चाहूंगी कि कौन सा
1: जी
0: गीत आप सुनना चाहेंगे।
1: जी सावन का महीना है तो सावन का वो सुना दो, सावन का महीना पवन करे सुर।
0: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी नमस्ते मैडम। जी
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं ग्राम लालो पोस्ट मणखेड़ा जिला आगरा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र।
0: नरेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: मैडम आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, खास है, ये समझ लो आपसे बात हो गई। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे बात करने के लिए, बात हो जाए, आज जाके बात हो पाई है।
0: तो बस नोट करके रखिएगा आज का दिन, और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि इतना सारा प्यार करने वाले हमारे जो श्रोता हैं और उनसे हम बात कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बहुत सौभाग्य की बात है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो
1: ये
0: नरेन
1: सोच
0: जी
1: रहा
0: क्या
1: था
0: करते हैं आप?
1: जी, मैं वहीं कोसी छाता में काम करता हूँ, कपड़े की कंपनी में मैडम।
0: अच्छा, तो आपका क्या काम रहता है उसमें?
1: जी इसमें हमारी क्वालिटी देखना रहता है कपड़े की।
0: अच्छा, जब कपड़ा बनकर तैयार होता है तो आप कपड़े को चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी रही है।
1: जी, तो
0: जी
1: उसको आगे पीछे करते रहते हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसे पीछे डाल देते हैं, दोबारा रिसेट होके आएगा फिर वो।
0: अच्छा, तो एक तरीके से आपका उसके कपड़े की जो गुणवत्ता है उसकी जांच परख करके आप उसको प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और नहीं तो आप उसको पीछे डाल देते हैं कि ताकि वो दोबारा से सही तरीके से तैयार होकर आए। और आज क्या सुनना चाहेंगे नरेन जी?
1: जी आपको आकाशवाणी परिवार को सावन मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। मैडम
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: एक गाना सुनना था,
0: हाँ जी,
1: फिल्म का नाम है अलग अलग।
0: अलग अलग
1: जी
0: दिल में
1: जी
0: आग लगाए सावन का महीना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप कहें तो गा के सुना दूं।
0: अरे बिल्कुल गाइए।

0: जी, बहुत बहुत सुंदर गीत आपने पसंद किया और उतना ही सुंदर गाया भी। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: जी।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चंद्रा खत्री के साथ।

फिल्म संगीत में साथियों आप सुनेंगे बाजीगर फिल्म का लिया ये गीत। कभी कभी दिल की आवाज़ दिल तक ही रह जाती है, जुबां तक आ ही नहीं पाती।

रानी मलिक के लिखी इस शब्द रचना को आपने सुना विनोद राठौर की आवाज में। फिल्म थी बाजीगर। जब दिल के शब्द जुबां तक आ जाएं तो फिर बस आशिकी फिल्म से लिया ये गीत गुनगुनाया जाता है।

आशिकी फिल्म से लिया ये गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल कुमार सानू के युगल सुरों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। जुबां पर जब बात आ जाए तो फिर साथियों साथ चलने का आनंद ही कुछ और है।

नदीम श्रवण के संगीतबद्ध इस गीत की शब्द रचना की थी समीर ने। अलका याग्निक उदित नारायण के सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म राज में। सफर में साथ चलते चलते इजहार होना भी तो जरूरी है।

समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। दिल तेरा आशिक इस फिल्म में अभी आपने सुना अलका याग्निक मुकुल अग्रवाल को। साथियों, जब बात दिल तक आ ही जाती है तो रातों की नींद खुद ब खुद उड़ जाती है।

FM 102.2 MHz पर आइए आरंभ करते हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीत बात और SMS।

अभी आप सुन रहे थे दिल फिल्म से लिया ये गीत उदित नारायण अनुराधा पौडवाल के सुरों में। शब्द रचना समीर की थी, संगीत बद किया था आनंद मिलिंद ने। तो साथियों, इस गीत के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

नमस्कार साथियों, आज आपके साथ मैं हूं आपकी आरजे मित्र चंद्रा खत्री। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी के संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। लीजिए पढ़ते हैं पहला संदेश नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवांकर का। निर्मला नवांकर, विशाल नवांकर मलकापुर से हैं, नारायण इंगले, सोपान ताइड़े और आशीष, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि ने। आप सुखरी कला से हैं और हमसे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम के माध्यम से। जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, चाचा, चाची, पूरा मुलानी परिवार पंडरपुर से हमसे जुड़ रहा है। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, भारत भूषण, अंजू, दिवेंद्र, संस्कृति, पौरुष, आप सभी बेंगलुरु से हैं। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप, कंवल कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। मोताला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, ओम कुमार और आरती, मेहर, ममता, कीर्ति, भूमिका, आप सभी श्री गंगानगर से हैं। अगला संदेश बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंछोर का है, जो छत्तीसगढ़ से अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचाया है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से, राधे कुमार, सविता, राकेश रंजन, विद्यार्थी, राजीव, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, श्वेता, रंजन एंड रजनीश कुमार, अंत कुमार, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना जाने, आप सभी का धन्यवाद। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, आप सभी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। इसी के साथ अगला संदेश छत्तीसगढ़ से लिख भेजा है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रदीप कुमार ने। आदरणीय मेजबान जी नमस्कार। नमस्कार, आदर्श नगर मलोड़ से, पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान। संदेश लिखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय, सौरभ, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रीनिका, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता हम तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से सोपान, मोहन, जिंगा, विदर्भ से वसंतराव भोजने और पीएस नवाकर, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रानी मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी देवी, क्रांति सिंह, प्रदीप कुमार, राजबहादुर शाह, शंभू शाह, कारिया गुप्ता, लवरी गुप्ता, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं मधुबनी बिहार से। तुलसी, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य, मेघा, पंचकुला चंडीगढ़ से हैं, खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, शाहदरा दिल्ली से सारे आप हमसे जुड़े हैं। सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश।

किशनगंज बिहार से जुड़ रहे हैं रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री और मेघाश्री, मेघा राशि। आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

इस गीत के बाद जोड़ रहे हैं श्रोताओं के नाम। उत्तम नगर दिल्ली से भूदराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और बानू प्रकाश, आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सतीश विमला अनेजा चंडीगढ़ से, इसी के साथ एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, आप सभी गंज डुंडवारा से कार्यक्रम सुन रहे हैं। गंगाधर, प्रमोद और प्रदीप सभी कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश, युधव, आप सभी राजस्थान से जुड़ रहे हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किस्सूता सुवर्णमानंद, सत्यमानंद, आप सभी जा

उत्तराखंड से हैं, मुन्ना भगत गुड्डी भगत पश्चिम बंगाल से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ हमारा अगला संदेश पहुंचाया है मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद साहिद ने। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू, आप सभी शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से जुड़ रहे हैं। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले पुणे से हैं अजय, करिश्मा, अबिका और विशाखा। समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम, रुबीना वसीम, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, आप सभी का संदेश सीतामढ़ी से हमसे मिल चुका है। और इसी के साथ बिहार से मोहम्मद आजिफ खान, निकहत परवीन, गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश, मंजुला, विशाल और निशा, वासुदेव, अनीता, रमेश राव, बुलडाणा महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हम तक मिला है जगदीश, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह, शिवांगी, आप सभी मध्य प्रदेश से हैं, रतलाम से। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल एंड विलिस सहारनपुर के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र से बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला, आप सभी का बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बेबी शालिया, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा, खंडवा मध्य प्रदेश से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। नारायण, कमल, दिव्या, जय बुलडाणा से जुड़ चुके हैं। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल, आप सभी को भी हमारी तरफ से नमस्कार। भिवानी से आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं। नरहन स्ट्रीट से ललन मिश्रा, नूदन मिश्रा, अमन पाराशर, बीबी आराध्या और लल्लू पंडित, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, मजनू का टिल्ला से हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर, करण राहुल, चंपा साहू हमसे जुड़ रहे हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं धीरज वी रबाड़ी गुजरात से, सार्थक इंदिरा राधेश्याम जिला सिरसा से, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी तमन्ना, हरजिंदर सिंह भाटिया जमशेदपुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। पूजा पायल, प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी गुजरात गांधीग्राम से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरवी, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी नेपानगर से, भागलपुर से जुड़ रहे हैं दिलीप कुमार सोनी।

उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती, आप सभी छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ संदीप मक्कर, ज्योति और ज्योति, आप सभी जालंधर से जुड़ चुके हैं, तो आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले अकोला से। इसी के साथ पीआर जैन, सूरज जैन, संगीता जैन, प्रकाश जैन लातूर से। परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, आप सभी पंजाब से हमसे जुड़ चुके हैं। अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमान नाज, असद अरहम, साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश, आप सभी राजस्थान से हमसे जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न धांडे, वकील वाल्मीक, नीनाजी, स्वप्निल, मलकापुर, महाराष्ट्र के श्रोता हैं ये। अजय, करिश्मा, अविका, साइशा, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं पुनावले से। श्रीरामपुर से हैं डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना। प्रकाश भारती, जानवी, वैष्णवी, आप सभी नागपुर से हैं।

हमसे जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव, गंज डुंडवारा, उत्तर प्रदेश के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। श्री कृष्ण संदीप और अमूल्य महाराष्ट्र से हैं, धर्मेंद्र कपिल ईशान राजस्थान से हैं, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, आप सभी को भी हमारा नमस्कार। पीयूष सिक्का कोयल और डुग्गू भाविक, आप सभी रोहतक से जुड़ रहे हैं, नरेश लक्ष्य कोयल और नानक चंद्र मल्होत्रा, पानीपत के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी हमारा कार्यक्रम परिवार सहित देखते हैं, बहुत शुक्रिया। गीता रानी, गगनदीप, आरजू और डॉक्टर रमेश कुमार, पटेल नगर मालोट से, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, रमेश चंद्र चौहान, आप सभी सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से कार्यक्रम सुन रहे हैं, के शरद पाशपोर, श्रीमती शोभा पाशपोर, बीबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि, अक्षय और अभिनव, मनचला रेडियो लिसनर क्लब अकोला से, आप हैं मन भावन नैना, सत्यनारायण कपिल, शोभा फुंदीबाई बागरी, राजस्थान की श्रोता, संजय, सुजाता, शशांक, सीमा पोटिया कला दुर्ग से, विशाल, पूनम, सुरेश, दिशानी और निमित जलालाबाद वेस्ट से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला संदेश हम तक लिख भेजा है ललितपुर उत्तर प्रदेश से नामदेव रेडियो श्रोता संघ ने, भारती, पूर्वी, रूही, अन्नु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश, संतोष, अभय, अनिल, अजित, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, सारा ही परिवार, पूरा नामदेव परिवार हमसे जुड़ रहा है, हमारा कार्यक्रम देख रहा है, बैठ कर सुन रहा है, बहुत धन्यवाद। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम, गंज डुंडवारा से, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, मथुरा वृंदावन चांदनी चौक, गाजीपुर से जुड़े हैं प्रतीक, श्रीमती रोशनी, प्रांजल, इसी के साथ बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, अगला संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं तिरुपति प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, आनंद और रमेश, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल, आप सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से ही रिजवान खान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान, पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, पंकज, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, तेलंगाना से जुड़ रहे हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजानल्ला, फरहानल्ला, समायरा, आजमीन, गुड़िया, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन, देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी, आराध्या साहू, मोहम्मद खजा रिजामुनुद्दीन, मोहम्मद खजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम, जुबेरिया, वरंगल से जुड़ रहे हैं। विजया, अभिनय, साईकरण, लक्ष्मी नारायण करीम नगर से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कामरे, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामरे, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, शमसुल यासीन, गंज डुंडवारा से हम तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा हमसे

0: सावन झूमके, जी हाँ साथियों, सावन तो झूमके आ ही चुका है। आप सब भी सावन के झूमते हुए मौसम में आनंद लें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, झूलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ गीत बात और SMS कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी

0: के हैं। सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: लीजिए, प्रस्तुत है ब्रज लोक गीतों का कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर। आइए आनंद लेते हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा के गाए मल्हारों का।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा की गाय मल्हारों का।

0: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
0: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं।
3: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा के गाए मल्हारों का।

0: ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे शैलेंद्र कुमार शर्मा के गाए मल्हारों का। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही संपन्न करते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल BSC की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के

0: विषय पर मांग कर रहे थे। सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे से होगा। संसद समीक्षा आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे से, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।

हेलो किसानवाणी, यह कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा संध्या 6:50 से। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम।

युव वाणी से। इस कार्यक्रम में सुनिएगा एक वार्ता, विषय रहेगा डिजिटल साक्षरता। वार्ताकार होंगी कोकिला सारस्वत। चर्चाओं के साथ सुन सकेंगे फिल्म संगीत। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे चर्चा, विषय रहेंगे विश्व स्त्रीलिंग दिवस और समाज पर नशे का दुष्प्रभाव। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा 6:15। इस कार्यक्रम में भक्त कथाक्रम में आज का प्रसंग रहेगा भक्त सुदामा। कथाकार होंगी देवी चरण शर्मा। मंथन, यह कार्यक्रम 9:45 से आप सुनेंगे। मनी टॉक 9:30 से। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से। संध्या वंदन, यह कार्यक्रम संध्या 6:30 से प्रसारित किया जाएगा।

0: अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए करते हैं अपने देश को नमन।

0: संवेद सुरों में अभी आपने सुना देशगान एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए पेश है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को आपकी सखी आपकी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों आपको अच्छे दिन की मंगल कामनाओं के साथ, आप सभी के साथ हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम वनिता लोक आज की चर्चा के साथ। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे दूर रहो मेरे प्यारे भाई। बहनों जब हम नशा शब्द को सुनते हैं ना, तो सुनते ही नशा के जो जो कारण हैं और यानी उनके कारणों से जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वो हमारी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। क्यों बहनों ये बात सही है या नहीं? क्योंकि बहनों नशा एक अभिशाप है, यह एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान में जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम सहित चरस, स्मैक, कोकिन और ब्राउन शुगर जैसी घातक मादक दवाओं और पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इन जहरीले नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है, साथ ही स्वयं और परिवार की भी सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। नशे का आदि जो व्यक्ति होता है उसको सारा समाज एक तरह से हेय की दृष्टि से यानी नफरत की दृष्टि से देखता है। नशे करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ स्वरूप हो जाता है, उसकी समाज व राष्ट्र के लिए उपादेयता शून्य हो जाती है, वह नशे से अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है तथा शांतिपूर्ण समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। नशा अब एक अंतरराष्ट्रीय विकराल समस्या बन गई है। दुर्व्यसन से आज स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग और विशेषकर युवा वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस अभिशाप से समय रहते मुक्ति पा लेने में ही समाज की भलाई है। बहनों जो इस चंगुल में फंस गया वह स्वयं तो बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही साथ उसका पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। इससे युवाओं का करियर भी चौपट हो जाता है। दुर्भाग्य है आजकल नौजवान शराब व धूम्रपान को फैशन और शौक के चक्कर में अपना लेते हैं, यानी वो समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड स्टेटस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होती हैं और यह सभी तंबाकू उत्पादों पर अनिवार्य रूप से लिखी होती है और लगभग सभी को यह पता भी है। इसके बावजूद भी लोग बाग इसका सेवन बड़े चाव से करते हैं। यह मनुष्य की दुर्बलता है कि वह उसके सेवन का आरंभ धीरे धीरे तो करता है पर कुछ ही दिनों में इसका आदी हो जाता है। जब वो शुरू करता है तो वह सोचता है कि नहीं, मैं इसका आदी नहीं होऊंगा, मैं इसमें मतलब मैं इसके कंट्रोल में नहीं आऊंगा। लेकिन बहनों ऐसा नहीं होता है। एक बार आदी हो जाने के बाद हम उसका सेवन करें या ना करें, यानी तलब ही सब कुछ कराती है। समाज में पनप रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों का एक कारण नशा भी है। नशे से अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नशा किसी भी प्रकार का हो उससे भारी नुकसान होता है। ऐसे में नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सभी को आगे आना होगा। इसके दुष्प्रभावों का प्रचार प्रसार करें वह जागरूक करें, साथ ही अगर कोई कैसा भी नशा करता है तो सबसे पहले वह खुद इससे बचे और तब दूसरों को भी इस हानिकारक नशे से बचाए, तभी हमारा देश नशा मुक्त भारत होगा। जब जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश।

बहनों, एक घर को बनाना हर किसी का सपना होता है। घर सिर्फ ईंट पत्थर का बना एक ढांचा नहीं होता, बल्कि ये भावनाओं और खुशियों का सबसे खूबसूरत ठिकाना होता है। हर किसी का सपना होता है कि घर खूबसूरत दिखे। सही होम डेकोर आपकी घर की शोभा बढ़ाता है और वहाँ पर रहने वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी और सुखद माहौल भी देता है। अगर आप

भी अपने घर को एक नए और स्टाइलिश लुक में बदलना चाहते हैं तो हम आपको आसान व क्रिएटिव होम डेकोर आइडियाज बताएंगे। लेकिन बहनों, आप उसमें थोड़ी सी चीज और जोड़ेंगे, उसमें मल्टीपर्पज, यानी एक ऐसा घर जो मल्टीपर्पज होम हो, यानी आपने उसके बारे में तो सुना ही होगा, और अगर आपको नहीं है जानकारी तो हम आपको बताते हैं कि मल्टीपर्पज घर एक ऐसा आधुनिक घर होता है जिसमें एक ही स्थान या कमरे का उपयोग कई अलग-अलग कामों के लिए किया जा सकता है। इसमें जगह का सही इस्तेमाल करने और कम जगह में ज्यादा सुविधाएं देने पर जोर दिया जाता है और घर को बहुत ही सलीके से डेकोरेट यानी सजावट से संवारा जाता है। हमारी बहनों को सबसे ज्यादा चिंता अपने घर की साज सज्जा को लेकर होती है, तो आज हम अपनी बहनों की चिंता दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इस वार्ता के माध्यम से। वार्ता का विषय है मल्टीपर्पज होम डेकोर, जिसकी जानकारी दे रही हैं निधि भाटिया।

बहनों, हम बात कर रहे थे मल्टीपर्पज होम डेकोर। यानी मल्टीपर्पज होम डेकोर का मतलब ऐसा सजावट का सामान है जो सुंदर दिखने के साथ साथ कई कामों में आ सके। हिंदी में इसे बहुउद्देशीय गृह सज्जा कहते हैं। बहुउद्देशीय गृह सज्जा के मुख्य लाभ आपको बताते हैं। जैसे ये दिखने में सुंदर लगता है, घर के किसी भी कोने की ये शोभा बढ़ाते हैं। ज्यादा काम में आना, सजावट के साथ साथ सामान रखने या अन्य उपयोग में मदद करना और जगह की बचत छोटे घरों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसमें वो सामान होते हैं जैसे बेड है, सोफा है, कम बेड कम सोफा। तो ये ऐसे होते हैं बहनों, जब हमें इनको यूज करना है तो आप इन्हें खोल लीजिए, इसको इस्तेमाल करिए, और जब सजावट के लिए करना है तो आप सजावट के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ बेहतरीन उदाहरण है स्टोरेज ओटोमन, बैठने की कुर्सी या स्टूल जिसके अंदर आप सामान भी रख सकते हैं। दीवार की शेल्फ, दिखने में सुंदर वॉल आर्ट और उस पर किताबें या पौधे रखना। ज्यादा काम आना, सजावट के साथ सामान रखने या अन्य उपयोग में मदद करना। और बहनों, बहु उपयोगी फ्रेम या आर्च, इसे दीवार पर आप टांग भी सकते हैं या मंदिर में भगवान के पीछे सजावट के लिए भी रख सकते हैं। सुंदर स्टोरेज बॉस्केट्स, कमरे में सामान छिपाकर रखने और सजावट दोनों के काम आ सकती है। इस तरह से आप अपने घर को सजा सकते हैं और दीवारों को भी आप नया लुक दे सकते हैं। जैसे घर की दीवारें आपके इंटीरियर का सबसे अहम हिस्सा होती हैं, तो आप थोड़े से डेकोरेशन से इन्हें आकर्षक बनाकर आप घर का पूरा लुक बदल सकते हैं। आप घर को सुंदर बनाने के लिए दीवारों को नया लुक दें। आप वॉलपेपर्स, पेंटिंग्स या फोटो फ्रेम्स लगाकर दीवारों को आकर्षक बनाएं। साथ ही साथ आप लाइटिंग का करें इस्तेमाल। सही लाइटिंग कमरे को रोशन करती है और खूबसूरती को बढ़ा देती है। आप कॉर्नर में स्टाइलिश लैंप या फेरी लाइट्स लगाकर घर में वार्म और कोजी इफेक्ट को ला सकते हैं।

कैंडल्स और हैंगिंग लाइट्स डाइनिंग टेबल या लिविंग एरिया में इनका इस्तेमाल करने से घर और भी आकर्षक दिखता है। कुशन और पर्दे बदलें, ब्राइट और कंट्रास्टिंग कलर के कुशन कवर और पर्दे घर का पूरा लुक चेंज कर देते हैं। आप इनका इस्तेमाल घर को डेकोरेट करने के लिए जरूर करें। और एक और जानकारी आपको दें, कॉर्नर को बनाएं क्रिएटिव, यानी छोटे छोटे कॉर्नर घर में होते हैं तो आप उनको क्रिएटिव बना सकते हैं। यानी आप खाली कोनों में बुक शेल्फ, डेकोरेटिव पीस या हैंगिंग पॉट्स लगाकर इस जगह के लुक को खूबसूरत बना सकते हैं। इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं। हरे भरे पौधे घर का नेचुरल फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। तो आप बहनों इस तरह से अपने घर को सजाएं और खूबसूरत बनाएं और घर में पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराएं। और बहनों अब आपको सुनवा देते हैं यह प्यारा सा गीत।

विश्व स्टील पैन दिवस आज के दिन ही यानी 11 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य

पैन संगीत की कला और संस्कृति को मान्यता देना है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण 1946 में त्रिनिदाद और टोबैगो में स्टील पैन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। स्टील पैन, जो कैरेबियन संगीत का एक मेन हिस्सा है, अपनी अनोखी धुनि और लय के लिए जाना जाता है। यह दिन स्टील पैन के इतिहास और इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा देने का एक अवसर है। विभिन्न कार्यक्रम और संगीत प्रस्तुतियां इस दिन को और खास बनाती हैं। यह स्टील पैन संगीत और इसके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देने के लिए भी समर्पित है। स्टील पैन एक खास प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो त्रिनिदाद और टोबैगो का पारंपरिक संगीत वाद्य है। बहनों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्टील पैन की कला और इसकी वैश्विक पहचान को बढ़ावा देना है। आखिर 11 अगस्त को ही हम स्टील पैन दिवस क्यों मनाते हैं? यह इसलिए मनाया जाता है आज के दिन क्योंकि 1946 में त्रिनिदाद और टोबैगो में स्टील पैन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था और यह दिन स्टील पैन के संगीत को, इतिहास को मान्यता देने और उसकी सांस्कृतिक भूमिका को जाहिर करने के लिए चुना गया। स्टील पैन दिवस के संगीत की प्रस्तुतियां, वर्कशॉप्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोग इस दिन स्टील पैन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्व को समझाने के लिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस दिन संगीतकार और कलाकार अपने कौशल का प्रदर्शन करके स्टील पैन की कला को बढ़ावा देते हैं और इसे खास रूप में मनाते हैं। स्टील पैन को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया उत्साही और पॉजिटिव होती है क्योंकि यह संगीत वाद्य यंत्र लोगों को ऊर्जा और खुशी प्रदान करता है और इसके लयात्मक धुनें लोगों को आकर्षित करती हैं। इस दिन को मनाने से स्टील पैन की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है। स्टील पैन को लेकर हम सभी को पॉजिटिव और उत्साही प्रतिक्रिया रखनी चाहिए। और बहनों, आज इसके स्टील पैन विश्व दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम और समारोह जो आयोजित होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो संगीत प्रेमी हैं वो इसमें शामिल होते हैं और स्टील पैन दिवस पर बैंड की प्रस्तुतियां, संगीत कार्यशालाएं और सांस्कृतिक उत्सव शामिल होते हैं। ये कार्यक्रम स्टील पैन के संगीत की विविधता और इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। तो बहनों, ये तो हुई हमारी चर्चा विश्व स्टील पैन दिवस। और बहनों, हमारी घड़ी लगातार इशारा कर रही है, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय पर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, रेशमा अग्रवाल को नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश FM संगीत का कार्यक्रम। आइए सुने अल्तमश फरीदी और पलक मुछाल को फिल्म ड्रीम गर्ल में।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अभी आपने सुना बॉडीगार्ड फिल्म से लिया ये गीत। सुर दिए थे राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। प्रीतम के संगीतबद्ध इस गीत की शब्द रचना की थी शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।

0: 15 Russian regions. Amid widespread monsoon rains in Himachal Pradesh, normal life has been affected. Rain is being reported from most parts of the state, including the state capital Shimla. A report.
1: In view of the possibility of heavy rainfall in Kullu sub-division today, all educational institutions have been officially closed. According to a report from the State Emergency Operations Center, traffic has been disrupted on 259 roads across the state due to landslides and rain. Besides, 161 power transformers and 54 drinking water supply schemes have also been affected. The Mandi-Kullu National Highway 21 has been blocked near Jhalogi due to shooting stones falling on the road. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy rainfall in five districts, Shimla, Sirmaur, Kangra, Hamirpur and Mandi. A yellow alert has also been issued for four other districts, Chamba, Kullu, Solan and Bilaspur today. The department has advised people to exercise caution during adverse weather conditions and avoid unnecessary travel to vulnerable areas. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The Indian Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura and Rajasthan over the next 2 days. In Canadian Open 2026, former world number one Iga Swiatek of Poland stormed into the semi-finals with a 6-2, 6-1 win over Russia's Diana Schneider in 64 minutes. The six-time Grand Slam champion will face Ukraine's ninth seed Elina Svitolina, who defeated Ekaterina Alexandrova . Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex lost 398 points to 78,145 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Disruption continues in Parliament amid opposition uproar on several issues. Both houses adjourned till 2 p.m. Supreme Court clarifies immediate FIR must be registered for every missing person, irrespective of age or gender. 9 people killed in overnight Russian airstrikes across Ukraine. IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Swiatek storms into semi-finals with straight set win over Russia's Diana Schneider. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
3: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की

0: बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
1: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली

0: के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया।

0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
3: नए सपने, नए मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या?
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं

0: की आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं।
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
0: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
0: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
1: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
1: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
0: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
1: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
0: जी।
1: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
0: नशाखोरी से दूर रहें,
1: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
0: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
1: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
0: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
1: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
0: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
1: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
0: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
1: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
0: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता

0: लगता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
1: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
0: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
5: रॉलेट एक्ट वापस लो,
6: रॉलेट एक्ट
5: वापस लो,
6: रॉलेट एक्ट
5: वापस लो,
6: रॉलेट एक्ट
5: वापस लो,
6: रॉलेट

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
1: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत की चौथा इन्हें गोलियों से भून डालू। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
2: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
4: रोलेट एक्ट
5: वापस लो।
4: रोलेट एक्ट
5: वापस लो।
4: रोलेट एक्ट
5: वापस लो।
2: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति

0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप।
3: ठीक, ये सबक काफी है।
1: अबाउट टर्न, फायर।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी मेरी लत सीधी करते, मासी
2: पापा,
1: मासी मेरी लत
2: सीधी कर दिया
0: तेरे। जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक

0: कम पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
1: जनरल डार।
2: यस सर।
1: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
2: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
1: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
2: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
1: क्या वार्निंग नहीं दी?
2: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
1: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
2: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत NCERT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।

0: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
1: माँ देखो भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
0: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
1: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
0: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा मैं खेलने नहीं जाता। छः एकम छः,
1: एकम छः,
0: छः दुनी बारह,
1: छः दुनी बारह।
2: राहुल खेले नहीं आ रहे?
0: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छः ती अठारह,
1: छः ती अठारह,
0: छः चौक चौक।
3: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
4: अरे मीना तू रो क्यों रही है? और राहुल तू खेलने नहीं गया?
0: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
4: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
0: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
4: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
0: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
4: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
3: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
1: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
0: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
1: करता है पर पहाड़ा।
0: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
1: फिर पहाड़ा कब?
0: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
1: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
0: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
1: पक्का?
0: पक्का।
1: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
0: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
1: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
0: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
3: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
5: तो श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यही संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी इस व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम। टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

साथियों नमस्कार, युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। कलम सिर्फ कागज पर शब्द नहीं उतारती दोस्तों, वो विचारों को आवाज देती है। आज है विश्व स्टील पेन दिवस। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ये दिवस हमें लेखन की उस परंपरा की याद दिलाता है जिसने शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता और विचारों की अभिव्यक्ति को नई गति दी। आज भले ही कलम की जगह मोबाइल या कंप्यूटर ने ले ली हो, लेकिन एक बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या हम लिखते हैं और हमारे शब्द समाज पर क्या प्रभाव डालते हैं? क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से होती है दोस्तों, और विचार शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। यही विचार जब देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना से जुड़ता है दोस्तों, तो वो क्रांति का स्वर बन जाता है। आपको सुनवाते हैं

देशभक्ति के रंग की यही भावना हमें आज एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की याद दिलाती है जिसने बहुत छोटी उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 3 दिसंबर 1889 को जन्मे खुदीराम बोस किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज के दिन यानी 11 अगस्त सन 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी याद उम्र महज 18 वर्ष की थी। सोचिए साथियों, जिस उम्र में आज का युवा अपने सपनों की नींव रखता है, उस उम्र में खुदीराम बोस ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनकी शहादत हमें बताती है कि युवा शक्ति केवल ऊर्जा का नाम नहीं है। जब ऊर्जा के साथ उद्देश्य और साहस जुड़ जाए तो वही युवा इतिहास बदल सकता है। खुदीराम बोस हों या स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य ज्ञात अज्ञात सेनानी, उनकी कुर्बानियों ने ही आजादी की राह को मजबूत

0: आज हमारे सामने आज़ादी की आंदोलन जैसी प्रस्तुतियां ही नहीं हैं, लेकिन देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी आज भी है दोस्तों। आज हमें अपनी कलम को सच्चाई की आवाज़, अपने ज्ञान को समाज की शक्ति और अपनी प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाना है। विश्व स्टील पेन दिवस हमें विचार और अभिव्यक्ति की शक्ति की याद दिलाता है, जबकि खुदीराम बोस का बलिदान हमें साहस, समर्पण और देश प्रेम का संदेश देता है। तो आइए आज हम संकल्प लें, सोचेंगे सकारात्मक, लिखेंगे जिम्मेदारी से और करेंगे देश के हित में। इसी संकल्प के साथ युववाणी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं एक युवा वार्ता, डिजिटल साक्षरता। वार्ताकार हैं कोकिला सारस्वत।
1: आज का युग डिजिटल युग है, जहां हमारी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी लेकर आए हैं। जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक दूर है, लेकिन सही और गलत के बीच फर्क करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। यही समझ, यही जागरूकता डिजिटल साक्षरता कहलाती है। डिजिटल साक्षरता का मतलब सिर्फ मोबाइल चलाना या इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि इसका सही, सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करना है। हम डिजिटल दुनिया में समझदारी से आगे बढ़ें, खुद को सुरक्षित रखें और सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। आजकल ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार हमें अनजान नंबरों से कॉल या मैसेज आते हैं, जिनमें लॉटरी जीतने, बैंक अपडेट या किसी ऑफर का लालच दिया जाता है। ऐसे में लोग अक्सर बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं, जैसे OTP, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड। याद रखिए, कोई भी बैंक या विश्वसनीय संस्था आपसे कभी भी फोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगती। अगर कोई ऐसा करता है तो यह एक धोखा है। मजबूत पासवर्ड बनाना भी बहुत जरूरी है, ऐसा पासवर्ड जो आसानी से अनुमान न लगाया जा सके। साथ ही अलग-अलग अकाउंट्स के लिए अलग पासवर्ड रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधानी रखें। कैफे, रेलवे स्टेशन या किसी भी पब्लिक जगह पर फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करते समय अपने बैंकिंग या पर्सनल अकाउंट्स में लॉग इन न करने से बचें। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम अपने विचार साझा करते हैं, दोस्तों से जुड़े रहते हैं और दुनिया भर की खबरें पाते हैं, लेकिन क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? कई बार हम बिना जांचे परखे कोई भी खबर या मैसेज आगे बढ़ा देते हैं। यह गलत जानकारी, फेक न्यूज़ समाज में भ्रम और डर फैलाने का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर या लोकेशन शेयर करने से बचें। यह आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

0: एक और जरूरी बात, ऑनलाइन व्यवहार। जैसे हम वास्तविक जीवन में दूसरों का सम्मान करते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी हमें सभ्य और जिम्मेदार रहना चाहिए। किसी को ट्रोल करना, गलत भाषा का उपयोग करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यह सब गलत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें अपनी आवाज रखने का मौका देते हैं, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन ही नहीं है, बल्कि आज के समय में यह एक महत्वपूर्ण इंटरफेस बन चुके हैं, जहां से लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं और पेशेवर कार्य कर रहे हैं। आज कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे वह एक छोटा व्यवसाय हो, कोई कलाकार हो या फिर एक छात्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म सबको समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यदि हम इन प्लेटफॉर्म्स का सही दिशा में और समझदारी से उपयोग करें, तो यह न केवल हमारी जानकारी बढ़ाते हैं, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग घंटों तक सोशल मीडिया पर समय बिताते रहते हैं, जिससे पढ़ाई, काम और सेहत पर असर पड़ता है। डिजिटल साक्षरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें और डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। आप अपने दिन का एक निश्चित समय तय करें कब और कितना सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि आप ज़्यादा उत्पादक भी बनेंगे। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हर जानकारी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, वह सही नहीं होती। इसलिए हमें सही स्रोतों से जानकारी लेना और सोच समझकर निर्णय लेना सीखना होगा। डिजिटल साक्षरता सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी ज़रूरी है। जब हम जागरूक होंगे तो हम दूसरों को भी जागरूक कर पाएंगे। डिजिटल दुनिया एक शक्तिशाली साधन है, यह हमें जोड़ती है, सिखाती है और आगे बढ़ने के अवसर देती है, लेकिन इसका सही उपयोग करना हमारे हाथ में है। साइबर सुरक्षा का ध्यान रखकर, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करके और सही जानकारी को अपनाकर हम एक सुरक्षित और जागरूक डिजिटल समाज बना सकते हैं। तो आइए आज से एक छोटा सा कदम उठाएं, सोच समझकर क्लिक करें, जिम्मेदारी से शेयर करें और सुरक्षित रहें।
1: तो अभी आप सुन रहे थे डिजिटल साक्षरता विषय पर युवा वार्ता। वार्ताकार थी कोकिला सारस्वत। और अब आइए आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का।

ए आर रहमान, सुजाने और साथियों की आवाजों में रोबोट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और अब लीजिए सुनिए ममता शर्मा की आवाज में गली गली चूर है फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

स्वानंद किरकिरे की रचना आप सुन रहे थे ममता शर्मा की आवाजों में, और इसी गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको बता दें, यह गीत था गली गली चोर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएस

0: एसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, जिसमें आज भक्त कथा प्रसारित की जाएगी। शीर्षक होगा भक्त सुदामा, कथाकार होंगी देवी चरण शर्मा। संध्या वंदन कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा संध्या 6:30। संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, जिसके प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:15 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर मनी टॉक। रात्रि 9:45 पर मंथन और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण। ये तीनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देश गान। सुनिए समवेत स्वरों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये देशभक्ति परक रचना।

समवेत सुर में अभी आप सुन रहे थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये देशभक्ति परक रचना। इसी रचना के साथ ही देशगान का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र

0: से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम आप सुनेंगे इस व्यावसायिक अंतराल के बाद।
1: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम? टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला, देहरादून, जम्मू, अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए भक्त कथा। शीर्षक है भक्त सुदामा। कथाकार हैं देवी चरण शर्मा।

नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको ऐसी बात बताऊं जो भगवान व्यास ने भागवत में 10वें स्कंद में 80-81वें अध्याय में भगवान कृष्ण के परम सखा सुदामा की लिखी है। ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं कि ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, इन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी है और इनके गुरु का नाम सांदीपन ऋषि है। एक दिन की बात, गुरु माता ने इन दोनों को जंगल में भेजो और सुदामा को दो मुट्ठी चना दे दिए, कही कि कहूं भूख लगे दोनों खा लियो। जंगल में चले जाते हैं लकड़ी लेने के लिए। सुदामा को भूख लगी, दोनों मुट्ठी चना खा लिए। जब भगवान है भूख लगी तो भगवान ने कही, अरे भैया सुदामा, जो गुरु माता ने दिए हो हमें दे दो। तो सुदामा कहते हैं, भैया मुझे तो गुरु माता ने जो दो मुट्ठी चना दे खाए वो सब खा लिए। भगवान बड़े उदास हो जाते, कहते हैं, भैया तुमने तो ये बहुत ही अनर्थ कर दिया। कहा जाता है कि हक बिराना खाए के और यही मिलेगी सीख, और तन से कोड़ी होएगो तो भैया दर दर मांगे भी। करे भैया तुमने तो ये बहुत ही अनर्थ कर दिया, ये विधि का विधान है, ये मिट नहीं सकता। सुदामा रोने लगे, कहने लगे, हे प्रभु अब या को उपाय तो बता दो। भगवान ने कहा, जब तेरे पे कभी विपत्ति आ जाए तो मेरे पास चले आइयो। दिवस जात नहीं लागे, 12 दिना जाने में कोई देरी नहीं लगती है। शिक्षा पूर्ण कर सुदामा अपने माँ बाप के यहां पहुंचते हैं। सुदामा के पिता का नाम आत्मदेव, माता का नाम सुमति है। इनकी शादी सुशीला से हो जाती है। इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। भगवान की लीला विपत्ति घेर लेती है। सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कहते थे कि मेरे परम मित्र, बड़ा अच्छा प्यारा सखा कृष्ण है जो आज द्वारकाधीश है। तो पत्नी आग्रह करती है, बार बार कहती है, हे प्रभु, हे पतिदेव, आप द्वारकाधीश के पास जाओ, ये जो हम कष्ट उठा रहे हैं इसका निवारण करने वाले वही हैं। प्रार्थना करती है, चरण पकड़ लेती है, कहती है, द्वारिका को जाओ भरतार कहन तुम मेरी मानो। हे पतिदेव, द्वारिका को जाइए,

द्वारिका के लिए इतना आग्रह करती है। बार बार आग्रह करने पर सुदामा कहते हैं कि हे सुशीला, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे भगवान के पास, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं भगवान के लिए क्या ले जाऊंगा। खाली हाथ मित्र के पास नहीं जाते, खाली हाथ मित्र के पास जाने का मतलब असगुण होता है। सुशीला पड़ोसन से चार मुट्ठी चावल लेकर के आती है, एक कपड़े में बांध करके अपने पतिदेव को दे देती है। सुदामा चल देते हैं, भगवान का कीर्तन करते जा रहे हैं, फटी हुई धोती लपेटे नंगे पैरों चले जा रहे हैं, रास्ता भी पता नहीं है, भगवान का कीर्तन करते करते करते करते चले ही जा रहे हैं जंगल में। पानी गड्ढा कीचड़ कांटे कुछ भी नहीं देख रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, चलते चलते थक गए, रात्रि हो जाती है, ठोकर लग करके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, भगवान का सिंहासन हिलने लगता है। भगवान कहते हैं योग माया से कि मेरा भक्त सुदामा जंगल में बेहोश पड़ा है, ले आओ। सुदामा की आंख खुलती है, जैसे ही देखते हैं पूछते हैं लोगों से तो द्वारिकापुरी आ चुकी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और ब्राह्मणों के साथ तीन दरवाजे पार कर जाते हैं, चौथे दरवाजे पर द्वारपालों ने रोक लिया, कहा करी भैया तुम कौन हो और कहां जाना है। सुदामा कहते हैं मेरो नाम सुदामा है, मेरो यहां परम सखा रहे बे, वाको मैं परम मित्र हूं और वही के पास जा रहा हूं। द्वारपाल कहते हैं अरे भैया रुको, हम आज्ञा लेके आते हैं, जो आदेश होगा हम करेंगे। जाकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, उसकी बड़ी दीन दशा है,

कहते हैं जैसे ही भगवान ने दीन दशा को देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोई।

0: अग धोए भगवान के। आंखों से इतनी अश्रुधारा बह रही हैं, रो रहे हैं अपने भक्त को देख करके। आंखों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के पैर धो दिए। चरणादक सिर पर धारण कर भगवान अब अपने भक्त को हंसाने के लिए एक प्रसंग छेड़ते हैं। कहते हैं, अरे भैया, सब राजी खुशी तो हैं, शादी तो हो चुकी होगी। सुदामा हां हां करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे भैया, मुझे यूं तो बता दे कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, मुझे कछु तो दे दे, भेजा जरूर होगा। सुदामा लज्जित हो जाते हैं, उसे नहीं दिखाते हैं, कांख में दबा लेते हैं, उस पोटली को, चावल की पोटली को कांख में दबा लेते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, कांख में से उस पोटली को खींच लिया, छीन लिया, लेकर के एक मुट्ठी चावल खा लेते हैं। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए, भगवती मैया रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। हे प्रभो, आपने एक मुट्ठी चावल में ही सब कुछ दे दिया, अब दूसरी मुट्ठी में विप्र के अधीन हमको मत कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्त कथा, भक्त सुदामा की कथा। कथाकार थे देवी चरण शर्मा। और अब लीजिए सुनिए ये ब्रज लोकगीत डोरी लाल कोला के।

डोरीलाल गोला के गए इसी ब्रज लोकगीत के साथ ही ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या की इस शांत बेला में आइए उस परम सत्ता का स्मरण करें जिसकी माया अनंत है और जिसकी लीला का रहस्य कोई नहीं जान सकता। इसी भाव को स्वर देता ये भक्तिमय भजन फिल्म गोपाल कृष्ण से।

पाल को, जिनके दर्शन के बिना भक्त का मन व्याकुल हो उठता है। प्रभु के श्री चरणों में प्रेम और समर्पण से भरी यही पुकार के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला भजन, स्वर अनुराधा बोडवाल का।

जब मन संसार की उलझनों से थक जाता है, तब उसे सच्चा सहारा केवल प्रभु के श्री चरणों में मिलता है। ईश्वर के बिना जीवन की ये अधूरी सी अनुभूति और प्रभु मिलन की गहरी तड़प इस भक्तिमय भजन में सहज रूप से अभिव्यक्त होती है। आइए भक्ति और विरह के इसी भाव में सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में गुड्डी फिल्म से ये भजन।

0: वाणी जयराम के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गुड्डी फिल्म का भजन। इसी रचना के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में होगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जय हिंद।
1: रत्ना बहनी,
0: हाँ ओम भैया,
1: देखो हम पंचे यू सोचित हन कि अपने ख्यात मैया बढ़िया ते बढ़िया फसल उत्पादित हुए।
0: सही बात कहा तो वे कातन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे खेत का पानी जो है जरूर मिले।
1: बिल्कुल सही कहते हो, अपनी फसल का जब पानी मिली तो फसल बढ़िया तरह वैसे हुई। कबो कबो हम पंचे सोचित हन कि बढ़िया तरह पानी मिल जाए लेकिन नहीं मिल पावत है।
0: सही बात कहा तो वो पानी हम पंचन का समय ते मिलत रहे, वही के खातिर हमारी जो सरकार है वह यू प्रयास करत रहते कि हमारे खेत का पानी मिले, यानी कि हर फसल का हर खेत का जो है पानी जरूर से जरूर मिले, वही के खातिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो बहनी। और देखो एक अंतर्गत जो हर खेत के यहाँ पानी मिले और वही के साथ साथ प्रति बूंद ज्यादा फसल हो।
0: हाँ सही बात कहा तो बस यू है कि जितना जरूरत है जरूरत भर पानी जरूर मिले रहे, कायस की कबो कबो कहा होता है पानी की कमी के कारण हमारी फसल जो है खराब हो जाता है या उतनी बढ़िया ना हो पावत है।
1: हाँ, और देखो जब ये सब चीजें जरूरी हो जाती हैं तो जरूरी यह हो जाते हैं कि जो आज की खबरें हैं वही जान लीन जाए।
0: बिल्कुल आओ जाना जाए।
2: यूपी में 10 रुपए लीटर खरीदा जा रहा गौमूत, 15 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और जैविक खेती से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। बुलंदशहर में FPO के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों और पशुपालकों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जा रहा है। स्याना तहसील के नरसेना गांव में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 15 गांव जुड़े हैं और रोज करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है। गांव में 200 लीटर क्षमता के टैंक लगाए गए हैं। संग्रह में सहयोग करने वाली महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए कमीशन दिया जा रहा है और करीब 300 महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया गया है। एकत्र गौमूत्र में जड़ी बूटियां मिलाकर खेती में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। आगे खरीद दर 20 रुपए प्रति लीटर करने और सफलता के बाद इस मॉडल को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में विस्तार देने की योजना है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: रत्ना बहनी।
7: हाँ ओम भैया।
6: देखो हम पंचे अपन जब फसल के यहाँ तैयार करी थन तो कबो कबो ऐसी ऐसी चीजें वहमा हो जाती हैं फसल में, यहाँ देख जाते कहूँ पाती पीली पड़ रही है, कहूँ और कोई समस्या आ रही, तो वह चीज हम पंचे जाने नहीं पाए थन।
7: सही बात कहा, तो उनके खातिर जो विशेषज्ञ भैया आवत है वह बता सकते हैं कि भाई इनमें क्या समस्या है, उनका दिखाए सुनाए के हम पंच जान सके थे।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो ये सब पोषक तत्व की कमी तरह होते विशेषज्ञ भैया बतावा करते हैं, तो आओ आज की बात में यहाँ जान लीजिए।
7: बिल्कुल, तो खरीफ फसलों में पोटाश और गंधक प्रबंधन के बारे में यहाँ जाना जाए।

0: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं। खरीफ फसलों में पोटास और गंधक की भूख कैसे मिटे, इसके लिए क्या प्रबंधन करना है आपको, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर केएन तिवारी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय बहुत जगह बुआई और रोपाई हो चुकी है, किसान भाई बहन जो खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व की कमी है, उसकी भूख कैसे मिटाएं?
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज की ये चर्चा जो पोटास और गंधक के महत्व और उसकी जो कमी फसलों में हो रही है उसके बारे में हो रही है। आम तौर पर किसान जो है यूरिया और डीएपी का प्रयोग खरीफ फसलों में करता है और उसका नतीजा ये होता है कि पोटास की कमी सारी फसलों में खरीफ की
0: जी
1: दिखाई दे रही है,
0: चाहे धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, मक्का हो,
1: सब में आप देखिए उसकी नोके पुरानी पत्तियों की पीली होती हैं, वो किनारे किनारे वो झुलस जाती हैं।
0: तो किसान भाई अगर खेत पर पहुंचे तो पहचाने कैसे?
1: अभी पहचान ऐसे कर सकता है ना कि जो पुरानी पत्तियां हैं उसकी नोके पीली होनी शुरू होती हैं
0: जी,
1: और उसके बाद में वो पीलापन किनारे किनारे बढ़ता है और बाद में पोटास की कमी की वजह से वो पीलापन झुलसा सा दिखाई देता है। ये पोटास की कमी का लक्षण है और इसी तरह के लक्षण सारी फसलों में दिखाई देते हैं,
0: चाहे वो मक्का है, धान है, दलहनी फसलों
1: बाजरा
0: में अरहर, उर्द, मूंग है,
1: बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, लोबिया, ये सारी फसलों में आप इस तरह के लक्षण देखते हैं।
0: और तिलहनी फसलों में?
1: तिलहनी फसलों में जैसे मूंगफली है, तिल है, तो सोयाबीन बहुत सारे क्षेत्र में है, यूपी में तो कम है,
0: बुंदेलखंड में,
1: हाँ, तो इसमें भी इसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जहाँ पोटास की कमी के लक्षण दिख रहे हैं या जहाँ बुआई चल रही है, रुपाई चल रही है, तो पोटास का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
1: पोटास के प्रबंधन के लिए जो यूरिया डीएपी डालते हैं बुआई के समय या रुपाई के समय, उसमें पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए
0: बेसल डोज में।
1: अगर बेसल डोज में नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे धान की रुपाई हो गई है, मक्के की बुआई हो गई है, मूंगफली की बुआई हो गई है, तो खड़ी फसल में, जिस फसल में टॉप ड्रेसिंग करते हैं,
0: हाँ,
1: जैसे धान है, अनाज वाली और फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसी के साथ पोटास, म्यूरेटा पोटास है, नेचुरल पोटास भी अब उससे बन रहा है, सीरे से, शुगर इंडस्ट्री से, तो उसका प्रयोग कर दें टॉप ड्रेसिंग में।
0: तो कितनी मात्रा एकड़ पीछे डॉक्टर साहब?
1: अब एक एकड़ में मेरे ख्याल से कम 25 किलो तो डालें, लाल वाला पोटास है,
0: हाँ, पूरे खेत में बिखेरना
1: और नेचुरल पोटास को भी यूरिया के साथ डाल दें, उससे पोटास की कमी दूर होने की संभावना पूरी रहती है। नहीं तो अगर इसके बाद भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट जो 0050 आता है,
0: एनपीके, जल
1: विलय, हाँ, ये जल विलय उर्वरक है, बड़ा कारगर उर्वरक है, इसका प्रयोग करना चाहिए।
0: तो इसकी कितनी मात्रा कितने पानी में?
1: देखिए, इसका 1% का घोल बनाया जाता है, इसका मतलब कि 1 लीटर में 10 ग्राम और एक टंकी जो 15 लीटर की है उसमें 150 ग्राम, इतना मिला करके घोल बना लें और छिड़काव कर दें।
0: तो ये तो खड़ी फसल में कभी भी जब लक्षण दिखे कमी के पोटास की तो
1: बिल्कुल
0: पानी छिड़काव,
1: हाँ बिल्कुल, ये बड़ा कारगर है और इससे पोटास की भी कमी दूर हो जाती है और जो दूसरा तत्व इसमें है गंधक की भी हो जाती है।
0: कोई क्रांतिक अवस्था जिस पर इसका प्रयोग ज्यादा फायदेमंद होगा डॉक्टर साहब?
1: देखिए, जब फसल करीब करीब 1 महीने की हो जाती है तो पोटास की कमी की वजह से इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और धान में जो क्रांतिक अवस्था है किले निकलने की, बढ़ने की फसल के, उस समय तो इसका प्रयोग, जब यूरिया का प्रयोग करते हैं इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, अगर फसल में पोटास की आपूर्ति समय से है तो क्या क्या फायदा होगा, फसल में क्या दिखेगा?
1: देखिए, पोटास बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, एक तो पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और जो कीड़े बीमारी की समस्या आती है उससे फसल बच जाती है पोटास की वजह से,
0: प्रतिरोधक क्षमता,
1: हाँ। इसके बाद जो सूखे और पाले की समस्या आती है, अब खरीफ में तो सूखे की समस्या आएगी या जल भराव की समस्या आएगी,
0: दोनों में,
1: हाँ दोनों में ये बड़ा कारगर होता है।
0: और जो क्वालिटी है
1: गुणवत्ता। हाँ देखिए,

0: अब इसके बाद उपज बढ़ेगी और जो उत्पाद की गुणवत्ता है उससे जो उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और पोटास को इसीलिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है कि माने अच्छी उपज भी और अच्छी गुणवत्ता भी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 750-510-3059 7505-103059।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व

0: खरीफ फसलों में पोटास और गंधक पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब?
1: देखिए, ये दोनों पोषक तत्व जो हैं, पोटास और गंधक, इनकी मिट्टी में भी कमी हो गई है और उस कमी की वजह से फसलों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कमी की। और ये दोनों पोषक तत्व ऐसे हैं कि बीमारी कीड़े से बचत होती है। गंधक जो है वो प्रोटीन को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा गंधक का है कि जो फंगस रोग और इस तरह की बीमारियां हो रही हैं उसमें गंधक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है,
0: यानी फफूंदी नाशक के रूप में भी।
1: फफूंदी नाशक के रूप में भी। तो हमारा तो किसान भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि आप किसी भी तरह से खाली यूरिया और डीएपी पर आश्रित न रहें। इन पोषक तत्वों की जमीन में कमी हो गई है तो ये दोनों पोषक तत्व यूरिया डीएपी के साथ में डालें और उसका लाभ उठाएं।
0: प्रोफेसर के एन तिवारी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जो फसलों के आवश्यक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरा और चौथा पोषक तत्व है वो पोटेशियम यानी पोटास और गंधक है, और इसका खरीफ फसलों में कैसे प्रबंधन करें किसान भाई बहन ताकि माटी और फसल की भूख मिट सके और फसल का पोषण अच्छा हो, उसकी अच्छी पैदावार मिले, अच्छा लाभ मिले। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना बहनी।
3: हाँ ओम भैया।
2: देखो, जब इतनी नीक नीक जानकारी मिल जाती है और अगर गीत गौनाई सुनाई मिल जाए तो कितना आनंद आ जाता है।
3: बिल्कुल सही बात कहा। तो काहे ना पंच भाई बहन इनका सबका जो है एक बढ़िया सी गौनाई सुनवान दिन जाए।
2: हाँ,
3: जो विकास गीत है चंद्रभूषण तिवारी की आवाज में।
2: हाँ बिल्कुल, आओ सुना जाए और पंचो सुने और आनंद ले।
3: बिल्कुल।

0: रत्ना भाई
1: हाँ भैया।
0: देखो अपने बीच मैया बहुत किसान पंच भाई होते हैं जो उन अपन विशेषक भैया बतावत हैं वो अपनी खेती मैया नवाचार अपनाए किया अपनी खेती मैया बढ़िया बढ़िया फसल उत्पादित करते हैं।
1: सही बात कहा। तो वैसे जो है हमहू पंच सीखी थे कि भाई कैसे बढ़िया करते हैं ये पंच, तो हमहू पंच करी हुई का।
0: तो आज देखो अपन किसान भैया आ चुके हैं और उनकी बतकही सुना जाए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहराइच जनपद के मेहपुरवा ब्लॉक के परवानी गौढ़ी गांव के शिवशंकर सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय खरीफ में कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: किसान साथियों सबको नमस्कार। मैं काला नमक धान की खेती करता हूं। मैं इस साल 3 एकड़ काला नमक धान जो पारंपरिक है उसकी खेती किया हूं। मैं खेती प्राकृतिक विधि से गाय के मूत्र और गोबर से करता हूं। रासायनिक दवा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता हूं।
2: तो ये शुरुआत कब से हुई काला नमक धान उत्पादन की आपकी?
3: मैं किसान दिवस में बहराइच आया था, वहाँ एक हमारे फखरपुर विधानसभा क्षेत्र के जागरूक किसान जयंकर सिंह जी थे, उन्होंने मुझे बताया प्राकृतिक कृषि के विषय में। मैं गाय पहले से ही पालता था, उन्होंने मुझे बताया कि एक गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। मैंने इसको अतिशयोक्त मान करके उनके साथ जा करके सुभाष जी पालेकर जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उनका प्रशिक्षण लिया, लखनऊ में प्रशिक्षण लिया, झांसी में प्रशिक्षण लिया और भरतपुर राजस्थान में जाकर के प्रशिक्षण लेकर के मैं प्राकृतिक विधि खेती 2015 से शुरू किया।
2: यानी लगभग 11 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते
3: जी।
2: कुल खेती की जमीन कितनी है?
3: 6 एकड़।
2: 6 एकड़
3: जी।
2: और 6 एकड़ में आप 3 एकड़ धान लगा रहे हैं?
3: मैं 3 एकड़ धान लगाया हूँ, 3 एकड़ खेत पलिहर रखा हूँ जिसमें कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए ढैंचा बो रखा हूँ।
2: अच्छा, बाद में पलटाई करेंगे?
3: हाँ, पलट करके उसमें सरसों की खेती लेंगे, सरसों के बाद उसमें मक्के की खेती लेंगे।
2: गर्मी में
3: जी।
2: तो ये आप सुगंधित धान में जो पारंपरिक काला नमक है उसको पैदा कर रहे हैं, ये कितने दिन से कर रहे हैं?
3: ये मैं 2015 से कर रहा हूँ।
2: यानी 11 साल उसको भी हो गए
3: जी।
2: तो नर्सरी से लेकर के और रोपाई और फिर फसल की देखभाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं?
3: महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने प्राकृतिक खेती का है जिसमें गाय के मूत्र और गाय के गोबर गुड़ बेसन से जीवामृत बनाता हूँ और खेती में डालता हूँ और उसके बाद मैं पोषण के लिए शक्ति के लिए उसमें गाय के गोबर का घन जीवामृत बनाता हूँ और बना करके खेत में डालता हूँ और धान की बैठौनी करता हूँ।
2: यानी फसल की भूख मिटाने के लिए आप जीवामृत और घन जीवामृत दोनों का प्रयोग करते
3: जी? दोनों का प्रयोग करते।
2: लेकिन नर्सरी में कुछ खास?
3: नर्सरी में कुछ नहीं, केवल खेत को जोत करके पानी डाल करके घास को मार देता हूँ और उसके बाद उसमें वही जीवामृत डाल करके बीजामृत बनाता हूँ बीज संशोधन के लिए और बीज संशोधित के बाद मैं उसी में धान को अंकुरित करके बीज डालता हूँ, नर्सरी तैयार करता हूँ।
2: तब तक जिस खेत में आपको काला नमक धान जो पारंपरिक वैरायटी है उसकी रोपाई करनी है उसकी तैयारी भी करते होंगे?
3: जी। गेहूं कटने के बाद खेत को पलेवा करके जोत करके उसमें सनई या ढैंचा बो देता हूं और धान का बीज इतने अंतर पर डालता हूं कि कम से कम 50 दिन का ढैंचा हो जाए, उसके बाद पलट करके कार्बनिक शक्ति बढ़ाने के लिए पानी भर करके सड़ा देता हूं और नर्सरी तैयार हो जाता है। फिर लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच, पौध से पौध की दूरी 8 इंच करके श्री विधि से मैं काला नमक धान लगाता हूं।
2: तो आपकी काला नमक धान की रोपाई हो गई?
3: काला नमक धान की पूरी रोपाई हो गई।
2: तो जब आप ढैंचा या सनई की पलटाई करते होंगे तो खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता होगा
3: जी।
2: इस समय आपका खेत कैसा है, फसल कैसी है?
3: फसल हमारी बहुत

0: बढ़िया है, उसमें हम जीवामृत डाल करके तब धान बैठाते हैं और फिर दूसरी सिंचाई करके उसमें जीवामृत डालेंगे। 3 बार मैं धान में सिंचाई के, या बरसात होती है तो जीवामृत बना बना करके प्रति एकड़ 200 लीटर
1: अच्छा।
0: डालता हूँ, और डाल करके 3 बार के बाद फिर जीवामृत बना करके हर 15 दिन पर अपने धान की फसल या गेहूं की फसल में उसका छिड़काव करता हूँ।
1: तो उसका असर क्या दिखता है खेत में?
0: खेत में, हमारे खेत में केचुआ बहुत हैं, जमीन हमारी बहुत बढ़िया उपजाऊ है और हमारा पैदावार घटता नहीं। रासायनिक खेती से ज्यादा मुझे इसमें मुनाफा है, लाभ है, खर्चा मेरा कुछ नहीं है, जमीन मेरी ताकतवर है, शक्तिशाली है।
1: जो बिन बुलाए मेहमान खेत में उगते हैं, यानी खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
0: आच्छादन से,
1: अच्छा।
0: हाँ, हमारे यहाँ एक आच्छादन विधि है। आच्छादन विधि का लाभ यह है कि घास नहीं जमेगी, ह्यूमस तैयार होगा, उसके नीचे छाये में केचुआ पैदा होगा।
1: तो रोपाई के कितने दिन बाद मल्चिंग यानी आच्छादन बिछाते हैं?
0: आच्छादन 3 तरह का होता है। एक आच्छादन होता है सजीव आच्छादन, जो फसल के साथ होता है, एक आच्छादन होता है काष्ठ आच्छादन, एक आच्छादन होता है गर्मी में जुताई करके, मल्चिंग करके। मैं इस वक्त जो करता हूं, जैसे ढैंचा, कुछ ढैंचा तो मैं खेत में बो देता हूं और बोने के बाद काट करके उसको सुखवा लेता हूं। वो जो धान की रोपाई लाइन से लाइन की दूरी 9 इंच होती है, उस बीच में मैं अपने उस ढैंचे को बिछा देता हूं ताकि उसके छाये में घास जमने न पावे।
1: तो ढैंचे का डंठल
0: हाँ, डंठल
1: सुखा के रखते हैं?
0: सुखा के रखते हैं और उसी को उसमें बिछा देता हूं ताकि हमारी काष्ठ आच्छादन हो जाए, जिसमें ह्यूमस बने, केचुआ तैयार हो और हमारे खेत में घास न जमने।
1: चूंकि आप पिछले 11 वर्षों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और काला नमक धान पैदा भी कर रहे हैं, तो एकड़ में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं एकड़ में, और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: किसान साथियों, 1 एकड़ में मेरा ज्यादा से ज्यादा खर्च, 1 ट्राली गोबर, 200 लीटर जीवामृत, ये लगता है। कुल मिलाकर के मेरा लागत मूल्य 5,000 से 6,000 रुपया प्रति एकड़ आता है। और मेरा धान यदि 10 क्विंटल एकड़ का हुआ या 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ, तो हमारा लाख रुपया एकड़ का धान पैदा हो गया। तो हमें 1 एकड़ में लाख रुपया उत्पादन हुआ और खर्चा हुआ 5,000 से 7,000 रुपया, तो मुझे मुनाफा तिगुना होता है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 89 48 89 97 51, 89 48 89 97 51, 89 48 89 97 51।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
0: किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम किसानों का खुशहाल जीवन तभी होगा जब हम प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। इससे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारी आने वाली संतानें सुदृढ़ होंगी, सुरक्षित होंगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप गौ पालन करिए और प्राकृतिक खेती ही करिए।
1: शिव शंकर सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए, लगभग 11 साल पहले से आप 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस समय काला नमक धान 3 एकड़ आपके खेत में खड़ा है, जिसको आप प्राकृतिक खेती के तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ रत्ना भैया।
3: देखो हम पंच खेती जो करी थे वह जो है अपने मौसम के आधार पर करी थे और मौसम की अगर नीक नीक जानकारी रहते तो वही के हिसाब से जो

0: अपन खेती होत है वह बहुत नीके से हुई जाते है, तो काहे न पंच भाई बहन इनका मौसम की जानकारी दिवा दिन जाए।
1: तो रत्ना बेनी, जो मौसम के हाल प्रादुर्भाव है, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेरे अगले 7 दिनों का जो वर्षा का पूर्वानुमान है, 11 अगस्त 12 13 14 15 16 अगस्त तक का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले बताया दी संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के साथ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में कहूं कहूं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है। वही के अलावा जोन 15 अगस्त का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभाग में लगभग सभी स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की बहुत संभावना है।
0: और देखो भैया, जो मौसम संबंधी चेतावनी है वो जरूर जान लें कि 11 अगस्त यानी कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है संभाग में कहूँ कहूँ मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है, तो बहुत सावधानी से रहें। और 14 अगस्त से लगाए के 17 अगस्त तक में कहूँ कहूँ संभाग पर वर्षा होने की संभावना है। साथ में यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज 11 और कल 12 में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन वही के बाद कहूँ कहूँ वर्षा होने की संभावना है, तो वही हिसाब से काम करें।
1: तो रत्ना बेनी, यू तो रहा मौसम का हाल। जब मौसम का हाल हम पंचन का पता चल जाते हैं, तो हम पंचे अपने खेती पाती का काम वही अनुसार निपटाए लेते हैं, जैसे हम पंचन का कोनो नुकसान न हो फसल में या अपनी, और वही के साथ साथ जो अपन छप्पा छानी है वह हम पंचे ठीक ठाक कर लेते हैं। न तो कबो कबो कहा होते हैं कि जब सही तरह हम पंचे तैयारी नहीं कर पाए थे, अचानक मान लो बसा लाग जानकारी नहीं है तो बड़ी समस्या हो जाते हैं।
0: ओम भैया, अपने पंच भाई बहनी जो उनका कुछ नीक लागत है या कुछ कहा चाहत है, तो उनके खातिर जो है हम पंचन का अपनी चिट्ठी पत्री के माध्यम से बता सकते हैं, तो उसके खातिर आप पता बता दो।
1: बिल्कुल रत्ना बहनी, देखो पता है अपने कार्यक्रम का, कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ, जो पिन कोड है 226001।
0: और साथ में यहाँ ईमेल आईडी बता दो।
1: हाँ, ईमेल आईडी जरूर नोट कर ले, काहे तेरे दन दे भेजे सन दे अपने तीर पहुंचे ईमेल। तो ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। रत्ना बहनी,
0: हाँ ओम भैया,
1: देखो घड़ी कर रही अब इशारा और चले खो रही बिरिया, और पंचम तेरे लीन जाए आज्ञा। जय हिंद,
0: जय हिंद।

0: किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया, मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
2: इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे हैं वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान को जो मकसद है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे।
0: उधर इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया। वाराणसी में भी इस अभियान के तहत चिरई गांव विकास खंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा से पहले खंड विकास अधिकारी रिया सैनी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उधर जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली, पोस्टर मेकिंग, कविता लेखन जैसी रचनात्मक और देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू हो गया है। इस पद के लिए करीब 5,200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में आज 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए कल बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में कल हुई सुनवाई के बाद आरोपितों को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने न्यायालय में आरोपियों पर से भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं को हटाने की भी अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे।

0: समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संत कबीर नगर में भी विकास प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जिले के विकास को गति मिलेगी।
2: आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर मंदिर तक टू लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर का हर मार्ग फोर लेन से जुड़ रहा है। यहां लगातार हो रहे विकास कार्यों से गोरखपुर की नई पहचान बनी है।
3: अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमा होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग चार लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कल ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन। इससे पहले आज ऊर्जा मंत्री ने इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य न केवल बायो एनर्जी में भारत का नेतृत्व करना है, बल्कि प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। भोर में मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद में प्रयागराज से आए कांवड़िए शामिल हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर समेत अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु जलाभिषेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झाड़खंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात।

कहा बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

कुछ नगमे दिल को छू जाते हैं, कुछ धुनें यादों में बस जाती हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें शाम की नर्म रोशनी, सावन की फुहार और अपनों की मीठी यादें घुल जाती हैं। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम शाम सुहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ गीत संगीत से सजी आपकी अपनी महफिल शाम सुहानी में मैं हूं अरविंद कुमार। ये वो शाम है श्रोताओं, जहां गीत केवल गीत नहीं, आपके एहसासों की आवाज है, आपके भेजे संदेशों में छिपी फरमाइशें, आपकी पसंद के नगमे और आपकी यादों से जुड़े गीत आज की इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो आप भी हमारे साथ इस सुरीले शाम में शामिल हो जाइए, अपने संदेश और अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर, क्योंकि आपकी फरमाइशों से सजी गीतों के बिना शाम सुहानी अधूरी है। तो आइए, दिल के दरवाजे खोलिए, यादों की खिड़कियां खोलिए और संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में हमारे साथ कदम रखिए। शुरू करते हैं कार्यक्रम शाम सुहानी।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश मिला मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से। मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला विशाल नुहानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुर्रेकर। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, धारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े। खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पिपरिया छत्तीसगढ़ से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला ओम कुमार और आरती कुमारी। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, श्वेता, रंजना, रजनीश, आनंद कुमार, अच्छेलाल, बुल्कीवाली और फलना झा। हमारे अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और इनके साथ हैं पूनम गगनेजा, विशाली, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता होजा। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामणे, करुणा मीणा, अश्विनी और विपुल कामणे। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी, तमन्ना भाटिया इनके साथ हैं। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण और श्रीनिका श्रीनिजा।

मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़े हैं सोपान तैड़े मोहन करांगुले, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और पी एस नवनकर, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश पुरी, ट्विंकल मीनाक्षी, डिंपल, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, संतानगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया सिंधे, मानसी, निशांत जगताप, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। श्रोताओ, सावन की फुहार हो, मिट्टी की सौंधी खुशबू हो और साथ में हो किसी अपने का साथ, तो भला मन कैसे न गुनगुनाए। ऐसे ही सुहाने सावन और प्रेम की मीठी अनुभूतियों को आवाज देता है फिल्म मिलन का बेहद लोकप्रिय गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।
1: पवन करे सोर।
0: हाँ।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मिलन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, नीरेंद्र राजपूत, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और प्रियांशी, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी तानिया नारंग, खंडवा से राजेश सिंह, सुरेखा, शुभम, अक्षय और इनके परिवारीजन, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या गोस्वामी, सौंगा मगरलोड़ छत्तीसगढ़ से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका गजेंद्र और हेयांश कुमार, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेश, राजेंद्र, रेखा और धनेश्वरी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का संदेश में मिला है। पद्म टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम। हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। तेलंगाना से कानगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। रंगारेड्डी तेलंगाना से ये संदेश में प्राप्त हुआ है। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान। करणवीर हाउस भुचो कैनचनिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, तपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमो, एकम, दमन और अभिजोत। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाटू कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, टुगू भाविका और इनके परिवारीजन। नरसी कॉलोनी दिल्ली से आसमा खातून और नजमा खातून। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। गांव गोपी की नगरिया मथुरा से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकेता और इनके मम्मी पापा। गांव नगला पोला मथुरा से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुगू और इनके परिवार।

किचन। नौधरा मथुरा से जुड़े हैं कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल और अंजना। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर राजस्थान से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके परिवारिक जन। डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी। वनिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। श्रोतो, मुस्कुराहट जो बिना कुछ कहे भी दिल की बात कह जाए, और तबस्सुम जो किसी की शाम को भी रोशन कर दे, ऐसे ही चुलबुले और दिलकश अंदाज का एक खूबसूरत गीत अब आपकी फरमाइश की महफिल में मोहम्मद रफी की मखमली आवाज में। निशान फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

मोहम्मद रफी की आवाज में निशान फिल्म का गीत आपने सुना। खड़ग सिंह चोकर एडवोकेट प्रकाश नगर मथुरा से जुड़ी हैं। अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्र, रुचिका और इनके परिवारीजन। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू।

0: नई दिल्ली उत्तम नगर नवादा एरिया से अनिल कविता गौरव मानसी अरोड़ा मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का संदेश जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्र सिंह खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम पटेल ज्योति शुभम देवी किशन भावना मनमानस और कनिका पटेल बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगाहत परवीन अब्बासी शहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अर्जन अबान और इनके परिवारजन आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी कृष्णा चंद्रवंशी काजल मीनाक्षी और दिलीप सैयद आलम हाशमी गुलनाज नाज सलमा नाज असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी अजमेर से इन्होंने संदेश भेजा है और सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आपके रेडियो सेट पर
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए प्रेम पुजारी फिल्म के गीत के साथ ही शाम सहनी प्रोग्राम से अब मुझे यानी अरविंद कुमार को अनुमति दीजिए।

श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश

इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्यराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्यराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई।
इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता

मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के IS इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, S सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के

पंद्रहवीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 में हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देशकान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देशकान।

समवेत सुर में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे सत्य प्रकाश गुप्त की देशभक्ति परक रचना समवेत सुरों में, आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देश गान।

संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। इसी के साथ देशगान का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

स्वागत है। आज मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अरविंद कुमार। श्रोताओ, सावन की रिमझिम फुहारों, भीगी हवाओं और पुराने फिल्मी गीत की मिठास के बीच हम आपको ले चलेंगे सिनेमा के उस दौर में जब गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा हुआ करते थे। आज की फिल्म है राज कपूर और नरगिस की सदाबहार जोड़ी से सजी चोरी चोरी। वर्ष 1956 की यह फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और गीतों को अपनी लेखनी से सजाया था हसरत जयपुरी ने और शैलेंद्र के भी गीत इस फिल्म में शामिल थे। फिल्म के गीतों में लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफी जैसे महान गायकों के स्वर सुनाई देते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसी युवती से जो अपने घर के बंधनों और तय किए जा रहे विवाह से संतुष्ट होकर घर से निकल पड़ती है। यही युवती कामनी, जिसकी भूमिका निभाई है नरगिस ने। संयोग से उसकी मुलाकात होती है पत्रकार सागर यानी राज कपूर से। इसके बाद शुरू होता है सफर, रास्तों का, नोक झोंक का और धीरे धीरे दिल में जन्म लेते उस एहसास का जिसे प्यार कहते हैं। तो आइए कहानी के इसी भाव को महसूस करते हुए सुनते हैं लता मंगेशकर की मधुर आवाज में फिल्म चोरी चोरी का एक बेहद भावपूर्ण गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है चोरी चोरी।

श्रोताओं, कहानी आगे बढ़ती है। कामनी और सागर एक साथ सफर कर रहे हैं। शुरू में दोनों के बीच तकरार है, एक दूसरे को समझने में झिझक है, लेकिन यात्रा के साथ साथ ये दूरी कम होने लगती है। प्रकृति के खूबसूरत दृश्य, रास्तों की रौनक और साथ बिताए पल उनके मन में एक नया संसार रचने लगते हैं। और जब मन को अपनी मंजिल से ज़्यादा आज़ादी प्यारी लगने लगे तो दिल कहे उठता है, काश इन रास्तों का कोई अंत ना हो। इसी चंचल, स्वच्छंद और सावन की फुहार जैसी भावना को आवाज देती है लता मंगेशकर। सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

क्या ही सुंदर एहसास है, जैसे कोई पंछी खुले आसमान में उड़ता चला जाए और पीछे छूट जाए हर बंधन। लेकिन चोरी चोरी की कहानी में सिर्फ रास्तों की मस्ती नहीं है श्रोताओं। जैसे जैसे कामनी और सागर एक दूसरे के करीब आते हैं, वैसे वैसे उनके मन में छिपा प्रेम भी सामने आने लगता है। दोनों की ये नोकझोंक भरी प्रेम कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। कभी सागर कामनी के पीछे पीछे पहुंच जाता है तो कभी कामनी उससे बचने की कोशिश करती है। लेकिन प्रेम भी भला कहाँ किसी से छिपता है, और इसी चंचल प्रेम को गीत के रूप में अभिव्यक्त करता फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, लता मंगेशकर और मन्नर डे की आवाजों में।

0: तो श्रोताओं, इस संगीतमय सफर में हमने महसूस किया प्रेम की कसक, आजादी की उड़ान और प्रेमी प्रेमिका की मीठी नोक झोंक। चोरी चोरी की खासियत यही है कि इस कहानी के सफर में साथ जो बढ़ती है, उसी सफर में जो दो अनजान दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं, आखिरकार परिस्थितियां उन्हें फिर अपने अतीत और रिश्तों का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन इस पूरे सफर में जन्मा प्रेम अपनी मंजिल तलाश लेता है। और अब अरविंद को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति।

0: दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और

0: और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तलत महमूद की आवाज़ में आप सुन रहे थे सुजाता फिल्म का ये गीत। मजरों की कलम से निकले हुए ये शब्द थे जिन्हें सुर में ढाला था एसटी बर्मन ने। सुहाने तरहने कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भूमिका से। आवाजें प्रीति सागर और भूपिंदर की हैं।

प्रीति सागर और भूपेंद्र की आवाजें थीं भूमिका फिल्म के लिए। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में फागुन फिल्म से।

आश भोसले और साथियों की आवाज़ों में फागुन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत फिल्म सबक से मुकेश की आवाज़ में है।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारेख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर पारेख, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पारेख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,25,00,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत हुए हैं और 1,00,00,000 से ज्यादा मकान पूरे भी हो चुके हैं। अगर इनिशियली हम देखें तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक शहरी आवास की तस्वीर में काफी बदलाव आया है, तो आपके विचार में इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव जो था वो क्या था?
2: देखिए, पक्का हाउस मिलना ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है। अब जब हम क्लाइमेट चेंज के का प्रभाव देख रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहा है, ये सबके जरिए हैविंग ए शेल्टर, एक अच्छा मकान होना एक जरूरी बात है। लेकिन एक दृष्टि देखिए तो जो सबको न पक्का मकान अर्बन एरिया में देना वो टारगेट था।

0: 2022 का, इसमें दो बहुत बहुत प्रगति हुई है, फिर भी टारगेट से हम दूर है। फिर भी जितना हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अंदर रहने से, आबोहवा से, गर्मी से आपको राहत मिले। अरे इसके लिए हमको पक्का मकान की जरूरत है, लेकिन पक्का मकान की एक और भी बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी
0: गरीब लोग को एक पक्का मकान अपना होना एक बहुत इज्जत की बात होती है, जो सोसाइटी में, समाज में उनका महत्व बढ़ता है, और लोग समझते हैं कि अच्छा इनके पास एक घर तो अपना है। और इसके असर काफी होती है, क्योंकि लड़के के लिए अच्छी बहू और लड़की के लिए अच्छा घर मिल सकता है उनके एक्सचेंज में।
1: जी
0: तो ये सब मेरे ख्याल से बहुत अगत्य की बात थी कि ऐसा पीएम आवास योजना अर्बन में ऐसी सुंदर घोषणा की सरकार ने।
1: पारिक जी, आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो दूसरा चरण है 2.0, तो जाहिर सी बात है इसे पिछली योजना के अनुभवों से सीख लेकर तैयार किया गया है और अगले 5 वर्षों में शहरी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने को विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी स्थितियों में अगर देखें तो किस तरह का बदलाव लाया गया है और किस तरह से जो चुनौतियां भी सामने आई उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: बात एक सच सच है कि पहले चरण में हमने लगभग 1 करोड़ लोग को आवास दिया है,
1: जी
0: और अगर हम दूसरे चरण में ऐसी प्रगति करें तो भी काफी होगी। बट इससे भी अच्छा कोई कर सके तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरा ख्याल से इसमें क्या हुआ है कि सरली जो सब्सिडी दे रहे वो कैसे मिलनी चाहिए, ये सब आसानी से हो गया है। तो पहले से इससे ब्यूरोक्रेसी की कम हुई है, यानी इसकी जरूर असर होगी कि कभी लोगों को पहले से एप्लीकेशन किया लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन आज बहुत सा अप्रूवल हो गया है
1: जी
0: और काफी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया गया है। तो अगत्य की चीज ये है कि बस हम ये प्रोग्राम जारी रखें जब तक पूरा ध्येय हासिल न हुए, और ध्येय हासिल करने के लिए जितने ताकत, जोर और पैसे लगाना चाहिए।
1: पारिक जी, अभी जो 6 अगस्त को बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई थी, इसमें 2 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है और ये भी कहा गया कि 1,42,000 मकान लाभार्थी आधारित निर्माण और 67,000 से अधिक मकान जो है वो साझेदारी में किफायती आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। तो ये जो 2 मॉडल रखे गए हैं तो इनका लाभ किस तरह के परिवारों को मिलता है और जिन परिवारों के पास अपनी जमीन है या फिर अपनी जमीन जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन योजनाओं से?
0: इसमें बहुत से पहलू है। एक तो छोटे स्लम क्लियरेंस है, स्लम डेवलपमेंट, इसमें तो जे वहां रहते हैं स्लम ऑफिशियल स्लम रेसिडेंट है सबको मकान मिलने वाला है। ज्यादातर मकान देने में प्रॉब्लम ये होती है कि जमीन नहीं मिलती है,
1: जी
0: लेकिन इसमें से जमीन मिल उनको मिल जाएगी। दूसरा पहलू ये है कि सरकार जिसके पास जमीन है अपनी उनको भी मदद करती है, और जिसके पास पुराना घर है उनको अपग्रेड करना चाहे इसके भी मदद होती है, और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम बनाई है। तो मेरा ख्याल से ये सब स्कीमों हैं 5-6 अलग अलग तरीके के, इससे नॉट ओनली EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन बट ऑल्सो मिडल और अपर मिडल को भी फायदा होगा। एंड इसका जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें, जिसको हमको मदद करते हैं वो धीरे धीरे उनके साथ जो दूसरे को मदद नहीं करती है इसके ऊपर वाले थोड़े, तो इनको होता है कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब हमको क्यों नहीं। मेरे ख्याल से जरा कॉम्प्रहेंसिव विचार करके प्रोग्राम बनाया गया है।
1: आइए सुनते हैं पीएम आवास योजना पर ये विशेष रिपोर्ट। देश के शहरों में बिना पक्के मकान के रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक बड़ी पहल रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। महिलाओं को घर के स्वामित्व में भागीदारी देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना भी इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इस योजना के दोनों चरणों के तहत मंजूर घरों में से लगभग 1 करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। ये घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 25 जून 2015 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले और सभी मौसम में सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर इसे आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री

0: आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण को 4 श्रेणियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें लाभार्थी द्वारा निर्माण, साझेदारी में आवास निर्माण, किफायती किराए का आवास और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है। बीते सप्ताह 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 1.42 लाख घर लाभार्थी द्वारा निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इस श्रेणी में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 67,045 घर साझेदारी में आवास निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में सार्वजनिक और निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं और पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मांग आधारित योजना है, यानी लाभार्थियों के आवेदन के बाद मांग का आकलन, परियोजनाओं का निर्माण और लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार योजना की प्रगति की निगरानी करती है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मंजूर घरों को तय समय में पूरा करने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने पिछले वर्षों में शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब 1 करोड़ से अधिक घरों के पूरा होने के बाद अगली चुनौती मंजूर घरों को समय पर पूरा करना और दूसरे चरण के तहत तय किए गए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: पारिक जी, इस योजना में महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त स्वामित्व में मकान देने को विशेष प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर किसी महिला को मकान दिया जा रहा है तो उसे विशेष प्राथमिकता मिलेगी। तो कुल जो 1.25 करोड़ स्वीकृत मकान है, इसमें लगभग 1 करोड़ मकान जो है महिलाओं के नाम या फिर संयुक्त स्वामित्व में है। तो इस तरह का जो फैसला है, ये महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका में किस तरह से बदलाव आपको बताता है, किस तरह से दिखाता है कि अब महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी बदल रही है?
2: महिलाओं को जब हम घर की मालिकी देते हैं तब उनका प्रभुत्व बढ़ता है, घर में उनकी एजेंसी बढ़ती है और ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जितना बने इतना करे। तो ये अच्छी बात है प्रोग्राम में कि महिलाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है और सबसे ज्यादा तो वीडोज को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा ये जरूर से। इनके लिए उनकी घर में भी इनकी आवाज की कीमत ज्यादा होगी और लोग उनको इनका फैमिली नाम का जो फैमिली है वो भी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक मांग आधारित योजना है और परियोजनाओं के प्रस्ताव जो हैं वो राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आते हैं, तो ऐसे में क्या अलग अलग राज्यों की प्रशासनिक क्षमता और शहरी नियोजन व्यवस्था के कारण योजना को कैसे मतलब चेंज किया जाता है कि किसी प्रदेश में इस तरह से आवास बनेंगे, दूसरे प्रदेश में दूसरी तरीके से बनेंगे, या फिर संख्याओं का जो वितरण होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं?
2: हमारा जो राष्ट्र है इसमें राज्यों की सरकार को काफी स्वतंत्रता मिलती है तो इसको साथ में ले जाना जरूरी है। मेरा ख्याल से ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें सब राज्यों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे हित में है, जो उनकी सरकार है उनको भी लगेगा, इससे हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी। मेरा ख्याल से राज्यों को तो अलग अलग करना है लेकिन राज्यों को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी 1 डजन से हमारे यहाँ दरेक राज्य में अलग अलग सरकार है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ध्येय है, उसकी समझ नहीं आती है लोगों। और कभी कभी ऐसा एक लगता है कि ये तो अच्छी बात है, दूसरे को लगे कि इससे अच्छा दूसरा कोई है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो होने वाला ही है, बंधारण ने दिया हुआ प्रॉब्लम है तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन राज्यों के साथ बातचीत करके प्रोग्राम को मठारित कर सकते हैं कि कैसे करा जाए, कैसे दिया जाए, जितना बने इतना ज्यादा राज्य इसमें ना पूर्ण योगदान दे।
1: जी डॉक्टर पारिक, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात हम करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1.18 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से करीब 88 लाख से अधिक मकान पूरे हुए हैं और इनमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हुआ था। तो अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो इतने बड़े निर्माण कार्यक्रम का क्या महत्व है, और जाहिर सी बात है इसमें निर्माण सामग्री की भी काफी मांग होती है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा और लोगों के लिए किस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए?
2: ये काफी लगता है, फिर भी हमको देश में कितना कंस्ट्रक्शन, कितना बांध काम हो रहा है।

0: इसके हिसाब से इसको देना चाहिए। इससे सर्टनली थोड़ी बढ़त होती है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कब से ज्यादा अनस्किल लेबरर को एम्प्लॉय करता है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम से घर बांधने से सबका फायदा होता है, और खास करके वो अनस्किल लेबर हो उनका।
1: जी, और सरकार का लगातार लक्ष्य ये रहा है कि सरकार ने इन योजनाओं के साथ में जल जीवन मिशन को जोड़ा है, स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा है, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं। बिजली जो पहले एक बड़ी समस्या मानी जाती थी, आज उस दिशा में इतना काम हो रहा है कि घर पर ही लोग अपना सौर पैनल लगा करके अपनी बिजली बना सकते हैं, और साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन होता है उससे बेच भी सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाओं के साथ तालमेल किया जा रहा है, इनसे नागरिकों के जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है?
0: पहले हमने आवास योजना बनाई थी, और आज की आवास योजना में ये जो बदलाव आया है अलग अलग प्रोग्राम का लिए, स्वच्छता मिशन, 95% से भी ज्यादा घरों में आजकल बिजली पहुंची है, तो
1: जी
0: इससे बहुत फर्क हुआ है। इसलिए लोगों का बस क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अपेक्षाओं बढ़ गई है।
1: पारिक जी, सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है लोगों को, ताकि वो अपने खुद का मकान जल्दी से जल्दी बना सकें। तो लोग इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
0: ये अलग चीज है कि बिल्कुल फ्री मकान देने की वजह सबको कहा है कि बस हम तो सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग आसानी से थोड़ा लोन अपने आप लेते हैं, और उसको फिर मेरा मकान है, मैंने इसका पैसा दिया है, ये सब भाव से उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी बढ़ता है। मेरा ख्याल से काफी असर होती है सबके ऊपर। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम है इसमें फाइनेंशियल एड सबको मिलती है,
1: जी
0: लेकिन इसको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल से अच्छी चीज है। क्योंकि खाली पूरी फ्री बिल्डिंग देने से क्या होता है कि लोगों के बस सरकार पर निर्भरता बढ़ती जाती है, और इससे पोते अपने आप जो प्रयत्न करना चाहिए करने से कम होता है। ये अच्छी बात है कि सरकार सभी बहुत सी तरीके से मकान में सहाय देती है फाइनेंशियल, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पूरा नहीं, ओनली पार्शल है एड इज गिवन।
1: जी डॉक्टर पारी, के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेरा सौभाग्य आपने मुझे बुलाया है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीत एस पारिक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।

0: ये राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
2: नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जी सी चंद्रशेखर जी।
3: प्रश्न संख्या 241। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
2: नाउ ऑनरेबल मिनिस्टर,
4: स्पीकर सर,
2: दे नेवर प्रेशराइज मी, यू आर ऑलवेज प्रेशराइजिंग मी, आई एम नेवर अंडर द प्रेशर ऑफ देम, आई एम ऑलवेज अंडर द प्रेशर ऑफ यू।

0: Sanders said,
1: Mike,
0: you take your seat, I am calling him.
1: Sir, Mike.
0: You take your seat, I am calling him.
2: Mike.
0: First supplementary, Sriman G.C. Sanders said.
1: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
0: Sir, you please, I am allowing you. Sir. I am calling the second supplementary. डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी,
3: मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मंत्री से कि ऑफ शोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है।
4: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
5: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफ शोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक सीवेज उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन उसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो स्केयर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे हो इससे जुड़ी कई कंस्ट्रेंट से सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेजल फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
0: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी।
6: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस द रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइडल प्रोजेक्ट एज वेल एज इन विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड्स and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
0: Honorable Minister.
5: माने सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, तो ये जो प्रश्न है
7: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में वो कौन थी फिल्म का गीत आपने सुना। राजा मेहंदी अली खां की बोल थी, मदन मोहन का संगीत निर्देशन था। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में। फिल्म का नाम है बहार, गीतकार है मजरूह, संगीत एसटी बर्मन का है।

शमशाद बेगम की आवाज़ में बहार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह, संगीत एसडी बर्मन का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं तलत महमूद की आवाज में पतिता फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

तलत महमूद की आवाज़ थी पतिता फिल्म के लिए, गीतकार थे शैलेंद्र, संगीत शंकर जय किशन का था। लीजिए अब सुनिए अनमोल घड़ी फिल्म से तनवीर नकवी की रचना, नौशाद के संगीत निर्देशन में आवाज़ है नूर जहां की।

नूर जहां की आवाज में अनमोल घड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तनवीर नकवी की रचना थी, नौशाद का संगीत निर्देशन था। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है मजरूह ने और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

ये आवाज थी आशा भोसले की काला पानी फिल्म के लिए। शब्द रचना मजरूह की और संगीत सचिन देव बर्मन का था। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनपढ़ से। लता मंगेशकर की आवाज में रचना है राजा मेहंदी अली खां की, संगीत मदन मोहन का है।

लता मंगेशकर की आवाज में अनपढ़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खां और संगीत मदन मोहन का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हरि सिंह और साथियों का शहनाई वादन, राग है मधुकौंस।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हरि सिंह और साथियों का शहनाई वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
1: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भाग

0: रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhil Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human